0: करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6,000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 11 अगस्त दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी बठिंडा ते प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।
1: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, मिती 12 अगस्त दिन बुधवार नू शाम 5:30 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम अखर बोलदे ने। ते साडा इस वार दा विशा होएगा जिंदगी दी सार्थकता।

0: जवानी जवानी जवानी जवानी जवानी।
1: जी थरोते हो प्रोग्राम चल रहा सजीरी सवेर अते हुण जिहड़ा समा हो रहा जी वह हो रहा हैगा अखबारी सुरखियां दा। ते मेरे नाल ने महावीर सिंह अते मैं हाँ अमृतपाल ते हुण असी पेश करदे हां कुछ अखबारी सुरखियां
0: हाँ
1: जी।
0: जी अमृतपा, पहली जिहड़ी साडी अखबारी सुरखी अज बनी है पंजाबी ट्रिब्यून ते राष्ट्रीय पद्धर दी जे गल मैं करा तां अमरीका दे शर्तां मन्नण तक हारमुज नहीं खुलेगा। ईरान ने ये ऐलान कर दिता है जिहड़ा पिछले काफ़ी लंबे समय तो दोनों देशों के दरम्यान
1: जी
0: आपसी लड़ाई का जिहड़ा माहौल बनया होया
1: जी
0: उहदे विच जिहड़ा ईरान सी उहने खुलेआम कह दिता है। उहनां दा जिहड़े हैगे ने इहनां दे मंत्री जी उहनां ने स्पैशल ये
1: जी
0: गल नूं कहा भी नाकाबंदी का जिक्र करदे आ कि जेकर अमरीका अपनियां गैर कानूनी जिहड़ियां तबाहकुन कार्रवाइयां ने वो बंद नहीं करूंगा जां उन्हां दी सानू जिहड़ी ये भरपाई नहीं करके देऊगा तां
1: जी
0: असी जिहड़ा ये लांघा है जी ये खुलण नहीं देवांगे। तां इस करके ये साडे जिहड़ा ईंधण दी समस्या वो सारे सप्लाई दी सारे बनी हुई है। अमरीका दे विच आउण वाले समें दे विच देखो हुण सियासत दा जिहड़ा ये ऊर्जा है

0: बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण

0: सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
1: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
2: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
3: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
4: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूँ, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने पिछले एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहाँ सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
0: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के

0: कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोतो से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
3: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोरांबा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की

0: चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मानसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुस जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Parliament passes taxation and other laws amendment bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendra Nath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Bandh today if a lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the Money Bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system would remain free for consumers. The finance minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman

0: इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ, उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है, इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा विच केरल ना तब्दीली बिल 2026 ते राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सोध बिल 2026 नूं विचार ते पास करन लई पेश करनगे। श्री शाह केरल राज दा नां बदलण दी मंग करन वाले बिल ते विचार लई इक मता ल्याउणगे और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सोध बिल 2026 वी पेश करनगे जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कानून 1962 विच होर सोध करन बारे है। राज सभा विच ट्रिब्यूनल सुधार बिल 2026 नूं विचार ते पास करन लई लिया जाएगा। कानून ते न्याय राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल पेश करनगे। कानून विच इक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल कमीशन कायम करन दी वी तजवीज है। सरकार ने ई वीजा रखण वाले विदेशी नागरिकां लई भारत विच दाखल होण दी सहूलत वास्ते 11 होर अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहां नूं नोटिफाई कीता है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इन्हां विच 9 जमीनी सरहदी बंदरगाह अते 2 हवाई अड्डे शामिल ने। इन्हां विच भोपाल अते तिरुपति दे हवाई अड्डे अते पंजाब दे अटारी ते अगरतला दे जमीनी सरहदी बंदरगाह शामिल ने। मंत्रालय ने कहा है कि इन्हां बंदरगाहां दे जुड़न नाल इलैक्ट्रॉनिक वीजा नूं होर वी लाभदायक बना दिता है। मंत्रालय ने भी कहा है कि भारत 72 घंटियां तों भी घट समय विच करीब 95% ई वीजा अर्जियां नूं मंजूरी दिंदा है। इन्हां नवीआं बंदरगाहां दे जुड़न नाल ई वीजा रखण वाले विदेशी नागरिकां लई उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय प्रवेश बंदरगाहां दी गिणती 88 हो गई है। इन्हां विच 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाहां ते 13 जमीनी सरहदी बंदरगाह शामिल ने। व्यापार ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल सही उत्पाद की सही गुणवत्ता ढुकवी कीमत सही समय से खरीद नूं दर्शाउंदा है। श्री गोयल ने कल नवी दिल्ली विच जेम पोर्टल के 10वें स्थापना दिवस से यह गल कही। उन्होंने कहा कि जेम दे आउण तों पहलां सरकारी फंडां दी दुरवरतों हो रही सी, खरीद विच पारदर्शिता ते चंगे शासन दी घाट सी। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल राहीं दित्ते गए 3 करोड़ तों वध आर्डरां नाल 20 लाख करोड़ रुपए तों वध दे सामान अते सेवावां दी खरीद विच मदद मिली है। उन्हें कहा कि पहले 8 सालां विच 10 लाख करोड़ रुपए दीआं खरीदां कीतीआं गईआं सन, जदों कि अगले 10 लाख करोड़ रुपए की खरीद सिर्फ 2 सालां विच कीती गई सी। केंद्रीय मंत्री ने दस्सिया कि 2,25,000 तों वध औरतां दी अगवाई वाले उद्यमां नूं पोर्टल राहीं करीब 1 लाख करोड़ रुपए दे आर्डर प्राप्त होए ने। झारखंड विद्यार्थी अंदोलन के नेता दविंद्र नाथ महतो नूं कल रांची विच विधानसभा वल विद्यार्थियों की अगवाई वाले मार्च दौरान सेहत विगड़न तों बाद हस्पताल च दाखिल कराया गया है। डॉक्टरां ने उन्हां दे ब्लड शुगर दे पद्धर विच गिरावट तों बाद उन्हां दी हालत नाजुक दसी है। श्री महतो राज दीआं भर्ती प्रीख्यावां विच कथित बेनेमिया नूं लै के 9 दिनां तों भुख हड़ताल ते ने। श्री महतो दा दावा है कि झारखंड विधानसभा नेड़े पुलिस दे लाठीचार्ज दौरान ओ जख्मी होए ने। भारतीय जनता पार्टी ने मुजाहराकारी विद्यार्थियों से पुलिस की बेरहमी और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का सदा दिता है। भाजपा के सूबा प्रधान आदित्य साहू ने कहा कि यह बंद आज अद्धी रात तक लागू रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि सारिया जरूरी सेवावां नूं हड़ताल तो बाहर रखा गया है। कल झारखंड विधानसभा नेड़े हुई झड़पां विच कई मुजाहराकारी ते 4 पुलिस मुलाजम जख्मी होए गए। पुलिस ने मुजाहराकारियों विरुद्ध पानी दीआं उछाड़ां ते अथरू गैस की वरतों की लाठीचार्ज भी किया। झड़पां झारखंड विधानसभा दे नेड़े मुजाहराकारियों वल्लों कई बैरीकेड तोड़न तों बाद होईआं। ए खबरां तुसी आकाशवाणी तों सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRR न्यूज जलंधर। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेतीबाड़ी सिक्ख्या खोज ते विहारक सिखलाई नूं मजबूत करन दी लोड़ ते जोर दित्ता है। उन्हां कहा कि सरकार दी खेतीबाड़ी रणनीति दे 3 मुख टीचे भोजन सुरक्षा, पोषण अते किसानां दी उपजीविका ने। कल नवी दिल्ली विच भारतीय खेतीबाड़ी खोज परिषद दे विद्यार्थियों लई स्कॉलरशिप अते फैलोशिपां लई राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल नाल जुड़े सिद्धे लाभ तबादले DBT दी शुरुआत करदिआं श्री चौहान ने कहा कि स्कॉलरशिप सिद्धे अते समें सिर विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहीदी है। देश अज इनकलाबी आजादी घुलाटिए खुदी राम बोस नूं उन्हां दे 119वें शहीदी दिवस ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। बंगाल दे इनकलाबी खुदी राम बोस नूं पहली बार 1908 विच अज दे ही दिन अंग्रेजां ने फांसी दित्ती सी। इस नौजवान इनकलाबी दी सर्वोच्च कुर्बानी नूं श्रद्धांजलि देण लई

मुबारका फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मीका सिंह और साथियों की आवाजें थी, कुमार के बोल थे और गौरव रोशन का संगीत था। आज वर्ल्ड स्टीली पैन दिवस है, विश्व स्टील पैन दिवस हर साल 11 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। स्टील पैन दुनिया का अनोखा एक वाद्य यंत्र है जिसे पैन या स्टील ड्रम भी कहते हैं। इस वाद्य यंत्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व, इसकी परंपरा को मान्यता देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। स्टील पैन की उत्पत्ति कैरेबियाई सागर में स्थित त्रिनिदाद और टोबैगो में हुई और इसे 20वीं सदी में विकसित किया गया। ये वाद्य यंत्र स्टील के ड्रम से तैयार किया जाता है और इसकी ध्वनि में एक अलग ही मिठास और ऊर्जा महसूस होती है। इसकी खासियत यह है कि साधारण दिखाई देने वाली धातु को कलाकार अपने हुनर से, अपनी कला से मधुर संगीत में बदल देते हैं। स्टील पैन का विकास कैरेबियाई और वहां के रचना धर्मिता से जुड़ा है। धीरे धीरे इसकी धुनें द्वीपीय देश त्रिनिदाद और टोबैगो की सीमाओं से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंची। आज स्टील पैन का इस्तेमाल पारंपरिक और आधुनिक संगीत में भी किया जाता है। इस दिवस को मनाने का संदेश यह है कि संगीत की कोई सीमा नहीं है, अथाह है संगीत, सागर की तरह, नदी की तरह, धरती की तरह, आकाश की तरह। एक ध्वनि पूरी दुनिया के दिलों को जोड़ता है। ये तमाशा फिल्म का गीत आपको

0: मोहित चौहान की आवाज में तमाशा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे, A.R. रहमान की तर्ज थी।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
3: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
4: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
3: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
5: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे, 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहासे हुजूर।
0: चलिए एक और ब्रेक लेते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

बागी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोनाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स के, कुमार के बोल थे। मीत ब्रदर्स का संगीत था।

पाव हरे ला ऊंचा पाव यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा ये का यकी नाचो नाचो नाचो नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाओ में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो।

0: फिल्म आर आर आर का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी विशाल मिश्रा, राहुल सिपलीगुंज की, रिया मुखर्जी ने बोल लिखे थे, एमएम क्रीम का संगीत था।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी अनगिनत।

हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। ऐश किंग और शाशा तिरुपति की आवाजें थी, संगीतकार थे तनिष्क बागचे। इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। आप स्वस्थ और समृद्ध रहिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

पी जयराज का पूरा नाम था पैडी जयराज। आपको ये बता दें कि उनका जन्म 28 सितंबर 1909 को करीमनगर में हुआ था, जो उस जमाने में हैदराबाद स्टेट का हिस्सा था। पैडी जयराज जानी मानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लेखिका सरोजिनी नायडू के संबंधी थे। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत की थी फिल्मों में सन 1929 में मूक फिल्मों के जरिए। आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तार से आपको बताएंगे पी जयराज के बारे में। पी जयराज के करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने मूक फिल्मों से लेकर मॉडर्न टाइम तक अनेक फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय और ऐतिहासिक नायकों की भूमिका निभाने का कीर्तिमान पैडी जयराज के नाम है। यहां आपको ये भी बता दें कि संगीतकार नौशाद जैसे कलाकारों को मौका देने का श्रेय भी पी जयराज को जाता है। 28 सितंबर 1909 को निजाम स्टेट के करीमनगर में जन्मे पी जयराज का पूरा नाम था पैदी पाटी जयरूला नायडू। ये उनका आंध्र का नाम था। हैदराबाद में पले बढ़े, इसलिए उर्दू और दक्कनी पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी और आगे चलकर ये उनके करियर में बहुत ज्यादा काम आई। आपको बता दें कि उनके पिता एक सरकारी दफ्तर में अकाउंट्स देखा करते थे। पी जयराज की शुरुआती तालीम हैदराबाद के रोमन कैथोलिक स्कूल में

हुई और उसके बाद 3 साल के लिए उन्हें एक बोर्डिंग हाउस में पढ़ाया गया, वुड नेशनल कॉलेज के बोर्डिंग हाउस में, जहां उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली। इसके बाद पी जयराज पढ़े हैदराबाद के निजाम हाई स्कूल में। बीएससी करने के बाद उनकी तमन्ना थी कि वो नेवी में जाएं, लेकिन उनके बड़े भाई सुंदर राज इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्हें लंदन भेजना चाहते थे। पी जयराज की खुद की भी यही इच्छा थी कि वो इंग्लैंड जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करें, पर परिवार ने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी। अब हुआ ये कि सन 1929 में पी जयराज अपने घर से विद्रोह करके मुंबई आ गए। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। दरअसल मुंबई में उनके हैदराबाद का एक दोस्त जे जे हॉस्पिटल में हॉस्टल में रहकर डॉक्टर

0: थी। दरअसल मुंबई में उनके हैदराबाद का एक दोस्त जे हॉस्पिटल में हॉस्टल में रहकर डॉक्टरी पढ़ रहा था। वो उसके पास आकर रुक गए। बड़ी मुश्किल से हॉस्टल में एक महीने रहने की व्यवस्था हुई। पी जयराज को समुन्दर से बे इंतहा प्यार था। बस इसीलिए उन्होंने डॉकयार्ड यानी बंदरगाह में नौकरी कर ली। वहां दोस्त बने रंग्या के सहयोग से उन्होंने पोस्टर रंगने का काम भी किया। उन्हीं पोस्टरों की बदौलत पी जयराज पहुंच गए फिल्में बनाने के स्टूडियो तक। चूंकि बहुत ही मजबूत कदकाठी, बहुत ही नफासत से भरी भाषा, बहुत गजब का फिजीक, संवाद अदायगी में बड़ी कुशलता, तेलुगु थिएटर में काम करने का अनुभव, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि तलवार चलाने की कला तक उन्हें आती थी। जाहिर है कि फिल्म स्टूडियो में पहुंचते ही फिल्में बनाने वाले निर्माताओं को लगा कि ये लड़का तो बहुत काम का है। ये वो जमाना था जब डुप्लीकेट नहीं हुआ करते थे, और चाहे घोड़े पर दौड़ना हो, उछल कूद मचानी हो, चलती ट्रेन पर चढ़ जाना हो, ये सारे कारनामे अभिनेता खुद किया करते थे। ये वो दौर था जब एक जाबाज हीरो की निर्माताओं को सख्त जरूरत थी। फिल्म स्टूडियोज में आते ही जयराज को काम मिलने लगा। 30 का दशक था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था और स्वदेशी आंदोलन जोरों पर था। सन 1932 में पी जयराज ने स्वदेशी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। मामा वरेरकर उनके आकर्षक शरीर को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए और पी जयराज को उन्होंने अपनी पहली फिल्म में नायक की भूमिका के लिए चुन लिया। पर हुआ ये कि ये फिल्म बन न सकी। इस तरह से पी जयराज के करियर की गाड़ी आगे बढ़ती उससे पहले ही ब्रेक लग गया। पर पी जयराज को तो मुंबई में टिके रहना था। उन्होंने मुंबई के भाईखला में एक स्टूडियो में निर्देशक नगेंद्र मजूमदार के साथ सहायक निर्देशक की नौकरी ले ली। ये एक बड़ा मौका था, क्योंकि यहाँ पी जयराज ने न केवल सहायक निर्देशक के काम को समझा, बल्कि एडिटिंग और उसके अलावा सिनेमेटोग्राफी को भी समझा। आगे चलकर पी जयराज फिल्मों का निर्देशन भी करने लगे। बतौर निर्देशक पी जयराज की पहली फिल्म थी प्रतिभा, जिसकी प्रोड्यूसर थी देविका रानी। अभिनेता के रूप में मजूमदार ने पी जयराज को अपनी फिल्म जगमगाती जवानी में अवसर दिया, जिसके नायक माधव काले थे। नायक को घुड़सवारी और फाइटिंग नहीं आती थी, इसलिए पी जयराज ने मास्क लगाकर नायक के बदले में सारे स्टंट किए। ये मराठी फिल्म साहित्यकार मामा वरेरकर द्वारा निर्मित स्मार्कलिंग यूथ पर आधारित थी। इसमें जैबुन्निसा के साथ पी जयराज की जोड़ी काफी कामयाब रही। यंग इंडिया पिक्चर्स ने पी जयराज को 35 रुपए महीने के तनख्वाह, खाने और 4 लोगों के साथ गिरगांव में रहने की सुविधा देते हुए नौकरी पर रख लिया। आगे चलकर पी जयराज को भारत और जर्मनी के संयुक्त रूप से सहयोग से बन रही फिल्म शिकारी में एक्टिंग करने का मौका मिला। इसकी शूटिंग हैदराबाद में हुई थी। इसके बाद उन्होंने पतित पावन फिल्म में काम किया और यहां से आगे पी जयराज का करियर तेजी से बढ़ा। सुरैया के साथ उन्होंने 7 फिल्में की, हमारी बात, सिंगार, अमर कहानी, राजपूत वगैरह, ललिता पवार, शकीला, देविका रानी, नूर जहां और सितारा देवी जैसी अभिनेत्रियों के साथ पी जयराज ने काम किया।
1: राजू, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? जरा अपनी तरफ तो देखो, कैसा फूल सा चेहरा तुमने खाक में मिला दिया है। भगवान ने जीवन इसलिए नहीं दिया है कि इसे रो पीट कर काटा जाए। हम जो कुछ चाहते हैं सब तो हमें नहीं मिल जाता। मैं तुमसे कम दुखी नहीं हूँ राजू। जिस तरफ निकलता हूँ लोग उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं ये पापी है, इसने एक मासूम लड़की को झूठा सहारा देकर कहीं का ना रखा, ये उसका कातिल है। ये सब कुछ हमें और कौशल्या को सुनना पड़ता है।
0: यहाँ सुनते हैं फिल्म सिंगार का ये गाना।

1931 में आलम आरा के साथ बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो पी जयराज ने बदलते हुए दौर के मुताबिक खुद को ढाल लिया था। उनकी पहली बोलती हुई फिल्म थी शिकारी। 1932 में प्रदर्शित इस फिल्म में पी जयराज ने एक बौद्ध भिक्षु की भूमिका निभाई थी। जब फिल्में बोलने लगी तो अभिनेताओं को अपने गाने खुद गाने पड़ते थे। पी जयराज को इस दौर में गाना भी सीखना पड़ा था। फिल्म हमजोली में पी जयराज और मलिकाए तरन्नुम नूरजहां की जोड़ी नजर आई थी। बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु रॉय ने अपनी कंपनी की फिल्म भाभी के लिए पी जयराज को साइन कर लिया और इस तरह मुंबई में पी जयराज की कामयाबी का परचम लहराने लगा। फ्रेंड्स ऑस्टिन फिल्म भाभी के निर्देशक थे। ये फिल्म बेहद कामयाब रही थी। 80 हफ्ते तक कलकत्ता के एक थिएटर में ये फिल्म चलती रही थी।

आपको बता दें कि पी जयराज ने मराठी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया था। वैसे पी जयराज ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की, जिसमें से तकरीबन 160 फिल्मों में

जैसा कि हमने आपको बताया, पी जयराज राष्ट्रीय और ऐतिहासिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। सन 1960 में उन्होंने फिल्म लाल किला में काम किया, 1961 में रजिया सुल्ताना,

गौरी जयराज ने बाद के जमाने में कुछ चरित्र भूमिकाएं की और फिल्मों में कुछ छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। सन 1975 में आई फिल्म शोले में उन्होंने पुलिस कमिश्नर की भूमिका निभाई थी। सन 1978 में फिल्म डॉन में उन्होंने जो किरदार निभाया था वो था दयाल का किरदार। सन 1970 फिल्म जीवन मृत्यु में पी जयराज ने रॉय की भूमिका निभाई थी। सन 1978 में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में पी जयराज बने थे डॉक्टर कपूर। 1981 में फिल्म क्रांति में उन्होंने महाराजा लक्ष्मण सिंह की भूमिका निभाई थी। बतौर नायक उनकी आखिरी फिल्म थी खूनी कौन मुजरिम कौन। अब आपको बताएं कि बतौर निर्माता पी जयराज ने कौन कौन सी फिल्में बनाई। पी जयराज ने भारत भूषण, नरगिस और अपने खुद के अभिनय के साथ एक फिल्म लॉन्च की जिसका नाम था सागर। सन 1939 में पी जयराज ने अपने घनिष्ठ मित्र और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के कहने पर सावित्री नाम की एक युवती से विवाह किया था। सावित्री के कन्यादान की रस्म खुद पृथ्वीराज कपूर ने निभाई थी। पी जयराज की 5 संतानें थीं, 2 बेटे दिलीप राज और जय तिलक और 3 बेटियां जयश्री, दीपा और गीता। उनके सबसे बड़े बेटे दिलीप राज एक्टर बने। ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म शहर और सपना में उन्होंने एक्टिंग की थी। सन 1950 के जमाने में पी जयराज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। सन 1982 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पी जयराज एक कड़ी थे, एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने मूक फिल्मों से लेकर आधुनिक फिल्मों तक लगातार काम किया और जबरदस्त काम किया। बाद के जमाने में वो फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं और कुछ छोटे मोटे रोल निभाया करते थे। जब सेहत ने साथ देना छोड़ दिया तो उन्होंने फिल्मों का दामन छोड़ दिया। 11 अगस्त सन 2000 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। पी जयराज एक पुल थे, मूक फिल्मों से लेकर आज की फिल्मों के बीच का पुल। ये एक कड़ी टूट गई, रह गई तो बस पी जयराज की यादें।

0: शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: सेहतनामा।
1: हुण तुसीं सुन रहे सी विविध भारती मुंबई दे प्रसारण। FM बैंड 101.1 ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसीं सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो दी घड़ी ते समा होया जी 10:01:10। हुण पेश है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतां ते आधारित प्रोग्राम गीत पिटारा।

0: इस प्रोग्राम दी वाचक रहूंगी मैं यानी के ममता अरोड़ा। प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना। मिति 11 अगस्त, दिन मंगलवार, शाम 5:30 बजे, सिर्फ आकाशवाणी बठिंडा ते प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।
1: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, मिति 12 अगस्त दिन बुधवार नूं शाम 5:30 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम अखर बोलदे ने। ते साडा इस वार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवानियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है।
1: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
2: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 स्थल सीमा चौकियां और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी तथा अगरतला के स्थल सीमा चौकियां शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में स्वीकृति दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल उचित गुणवत्ता, उचित मूल्य और उचित समय पर सही उत्पाद की खरीद दर्शाता है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में जैम पोर्टल के 10वें स्थापना दिवस पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि जैम के आने से पहले सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे सुशासन की कमी थी। श्री गोयल ने कहा कि जैम पोर्टल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक ऑर्डर से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सामान और सेवाओं की खरीद में सहायता मिली है। मौसम विभाग ने राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और

0: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन तक बहुत तेज बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: बॉलीवुड रील्स यानी बीटी विद बीटी शुरू हो चुका है। आप सब कहाँ हैं? यहीं एकदम दिमाग लगाइए, अपना कान इधर ही रखिए और दिमाग भी इधर ही रखिए। फिलहाल तो आपको रखना ही होगा, क्योंकि आज बॉलीवुड सरताज बनने के लिए आपको कोशिश नहीं छोड़नी है। क्या पता आज के बॉलीवुड सरताज आप ही हो। तो आप सबका ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। और रही बात ध्यान न लगाने की, तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज होती है, आपके लिए आप ही की पसंद की खबरें होती हैं, आपके फेवरेट स्टार्स, फिल्मों के बारे में। तो बॉलीवुड की पूरी दुनिया की लेटेस्ट अपडेट इसी घंटे होती हैं। आप सब कहाँ हैं? यही है ना, अपना ध्यान एकदम बॉलीवुड ट्रेल्स में लगाकर रखिए, क्योंकि आकाशवाणी पर हर घंटे होते हैं बेहद खास। इस घंटे बॉलीवुड की दुनिया में हम सैर करेंगे, अपडेट्स जानेंगे और भी बहुत कुछ होगा। आज किसका बर्थडे है ये भी तो जानना है, और जो कुछ सरप्राइजेस हैं उसके लिए आपको सुनते रहना होगा आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। इस घंटे बीटी विद बीटी बबीता त्रिपाठी के साथ बॉलीवुड ट्रेल्स।

यस अभी आज जो सेलिब्रेशन चल रहा है उसके उपलक्ष्य में ये गाना हो गया। लेकिन हाँ, एक और सेलिब्रेशन है जो आप सबके लिए खास है, हम सबके लिए खास है। हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त एकदम पास में है, और ऐसे में हम सब सेलिब्रेशन के मोड में है और इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारियां हर जगह क्या हो रही हैं, सेलिब्रेशंस भी शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में एक हम मस्ती भरा देशभक्ति का गाना भी सुन लेते हैं, और साथ में आपको बता दूं कि बॉलीवुड की ढेर सारी खबरों के लिए आप बने रहिए, बॉलीवुड सरताज बनने के लिए आप बने रहिए, और जानने के लिए भी बने रहिए कि आज बॉलीवुड में लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, और साथ में आज बर्थडे किसके किसके हैं। बहुत सारी चीजें मिस ना हो जाए कहीं।

बसंती रंग में रंगे, क्योंकि हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप भी स्वतंत्रता दिवस का बिल्कुल नजदीक है और सेलिब्रेशन के मोड में आ चुके हैं, और साथ में आप आकाशवाणी रेनबो पर रेनबो के रंग में भी रंगे हुए हैं, क्योंकि आप आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं। और फिलहाल बॉलीवुड ट्रेल चल रहा है, क्योंकि रेनबो में ना बहुत सारे कलर्स होते हैं। फिलहाल बॉलीवुड का कलर यहाँ पर बिखरा पड़ा है, आप सब इसको इंजॉय कीजिए। ये कलर बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि और सारी चीजें होंगी, मतलब बॉलीवुड की अपडेट्स के साथ साथ बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें आप भी जुड़ेंगे। आपको मैंने बताया है, आपको बॉलीवुड सरताज जो बनना है उसके लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। फिलहाल तो आप ये सुनिए कि बॉक्स ऑफिस का क्या हाल है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लंबी बात करने की आदत तो हमें है नहीं। डीसी और एक और मूवी जो रिलीज हुई वो है ओ माय डॉग। 4 दिन पहले ये मूवी रिलीज हो गई, लेकिन ओ माय गॉड ये क्या हुआ, इतना कुछ फायदा तो हुआ नहीं। दोनों ही मूवीज अच्छी चल रही है, लेकिन अच्छी का मतलब बहुत अच्छी नहीं है, औसत कमाई कर रही है। कमाई के मामले में अगर बात की जाए, बाकी तो पसंद सब अपनी अपनी होती है। डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन ये मूवी रिलीज हुई थी, ये साउथ की मूवी है जो कि हिंदी में भी रिलीज हुई, कई सारी भाषाओं पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बेटर कर रही है। और निर्देशक अरुण मथेश्वरन हैं और वामिका गब्बी और लोकेश कनगराज मुख्य भूमिकाओं में है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 4.40 करोड़ कमाए थे, चलता रहा मामला। और साथ में अब जब टोटल कमाई की बात करें तो चौथा दिन मिलाकर अब 24.19 करोड़ कुल लगभग कारोबार इस मूवी ने कर लिया है। और कौन सी मूवी कारोबार कितना कर चुकी है आप जानना चाहेंगे? ओ माय डॉग, जिसकी बात मैंने पहले की थी कि अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, पंकज त्रिपाठी मेरे फेवरेट हैं, लेकिन क्या करें, मूवी के कलेक्शन की बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते हैं। फिल्म ने अब तक कुल 3.40 करोड़ नेट की कमाई की है। कई बार फिल्में अच्छी होती हैं, इमोशनल होती हैं, आपकी फैमिली को दिखाने लायक भी होती हैं, लेकिन कमाई अच्छा नहीं कर पाती हैं, ऐसा भी होता है। तो कमाई पर बिल्कुल ना जाएं। अगर आपको फिल्म देखना है तो ओ माय डॉग और ये जो दूसरी मूवी मैंने बताया साउथ की मूवी है और अभी हिंदी में भी रिलीज हुई है डीसी, दोनों ही मूवी आपके पास है, डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन। नाम चोपड़ा धांसू है, बेटर कमाई भी कर रही है, आप अपनी चॉइस है, देख सकते हैं। फिलहाल आगे क्या होगा जाने क्या होगा, देखते हैं। फिलहाल तो आग लगी पड़ी है सावन में, बारिश हो रही है बाहर हल्की हल्की, और थैंक गॉड जब मैं पहुंच गई ना तब शुरू हुई, मजा आता है ऐसे ना, ऐसे लगता है एक चैलेंज मैंने मतलब जीत लिया हो कोई।

मैं एक बात आपको बता दूं कि मेरी बात को आपको इसलिए भी ध्यान से सुनना है क्योंकि 11:30 बजे आपके लिए एक सवाल आएगा जिसका जवाब देकर आप बॉलीवुड सरताज बन जाएंगे, और बॉलीवुड सरताज बनते हैं तो हमसे बात करने का मौका मिलता है और आपकी दुनिया आवाज सुनती है आकाशवाणी रेनबो के जरिए, ये क्या कम है। और अगर आप बॉलीवुड सरताज नहीं भी बने तो आपको मौका तो मिलेगा ही अपना नाम शामिल करवाने का, यस आपका नाम शामिल होगा, आपके शहर का नाम शामिल होगा, ये भी क्या कम है। फिलहाल इतने सारे प्रलोभन देने के बाद आपको एक बात बता देती हूँ, बॉलीवुड में क्या कुछ चल रहा है आप जानना चाहते हैं तो हम इसीलिए बैठे हैं शो में। आपको बता दूं, सेवन डॉग्स नाम की एक कहानी आ रही है, एक इंटरपोल अधिकारी और एक अपराधी के इर्द गिर्द घूमती ये कहानी जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ मिलकर काम करती है। ऐसी कहानी अगर आप देखना चाहते हैं, नहीं भी देखना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि आपको जानना तो जरूर ही चाहिए कि इंटरनेशनल फिल्म में काम कर रहे हैं हमारे सल्लू मियां और संजय दत्त, यस सलमान खान और संजय दत्त इंटरनेशनल मूवी में एक काम कर रहे हैं और दोनों एक साथ काम कर रहे हैं इतने सालों बाद, कितने सालों बाद, 26 साल बाद एक साथ वो दोनों स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। पहले कौन सी मूवी में आपने देखी थी, याद है, चल मैं रभा और साजन, ठीक है, ये दोनों मूवीज में ये दोनों साथ में दिखे थे। अब आ रही है सेवन डॉग्स और इस मूवी में ये दोनों साथ में दिखेंगे, लेकिन मूवी कुछ खास है क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म है और आदिल अल अरबी बिलाल फल्लाह के निर्देशन में ये सऊदी अरब की एक्शन फिल्म है जो बन रही है। और सेवन डॉग्स फिल्म की कहानी में जैसा मैंने बताया कि एक इंटरपोल अधिकारी और अपराधी के इर्द गिर्द ये घूमती कहानी है और इसमें जो दोनों भूमिकाएं हैं वो एकदम दबंग टाइप की हैं दोनों की, सलमान खान की भी और हमारे संजू मियां की भी। सलमान खान के कैरेक्टर का नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो जानकर भी क्या करेंगे, जौहर नाम है, लेकिन बता देती हूं संजय दत्त रंजीत बने हुए हैं। अब मूवी में क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, फिलहाल तो हमें टीजर से यही सामने आया है, 51 सेकंड का टीजर है, उसमें सलमान खान का भी लुक एकदम देखने लायक है और संजय दत्त का भी एकदम दमदार अंदाज है और ये देखकर लोग यही कह रहे हैं क्या कमाल का इसमें इनका रोल है, एक्शन है। अब इतना ही समझ में आ रहा है, बाकी तो जो कुछ अगर आपको देखना है इस मूवी में उन्होंने करा क्या है, किस तरह का उनका रोल है, तो 21 अगस्त को सिनेमा घरों पे आ जाइएगा, मिलते हैं, देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या रोल है, कितना दमदार रोल है इनका। फिलहाल तो गाना सुनते हैं, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग दबंग। आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी बॉलीवुड रील्स बबीता त्रिपाठी के साथ। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप सवाल से व्हाट्सएप मैसेज ही करना है और बॉलीवुड सरताज बन जाना है, बस आज तो बन ही जाए।

अभी ओ माई गॉड की बात, ओ माई डॉग की बात की, ठीक है? ओ माई गॉड इसलिए कह रही हूँ कि अभी डॉगी डॉग की बात कर रही हूँ लगातार, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब फिल्में बन रही हैं या डॉग यूज करना जरूरी हो गया है सभी टाइटल्स में। ओ माई डॉग तो समझ में आता है, उसमें डॉग्स की कहानी है। अब सेवन डॉग्स की बात की, उसका मुझे नहीं पता अभी कहानी में क्या है, लेकिन एक और मूवी है स्लम डॉग जो आने वाली है, इसमें भी डॉग ही है। अब ये डॉग के पीछे की कहानी क्या है, ये तो जो मेकर्स हैं वो जाने कि हर फिल्म में आखिर वो इस तरह का नाम क्यों ले रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं नेशनल इंटरनेशनल सभी मूवीज में डॉग की का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि अब डॉग हमारे लिए बहुत लकी हो चुके हैं। खैर, स्लम डॉग 33 टेम्पल रोड ये मूवी आ रही है और इस मूवी में तब्बू है, और खास बात ये कि इसका टीजर रिलीज हो गया है, और जब टीजर रिलीज हुआ तो उसमें लेडी सिंघम अवतार में नजर आ रही है तब्बू। देखने लायक कमाल का इनका लुक है। लेडी सिंघम इसलिए कहा जा रहा है इनको क्योंकि क्या टक्कर दे रही है विजय सेतुपति को, और एकदम जबरदस्त एक्शन करती हुई दिख रही है, और एक्ट्रेस गौरी हेगड़े का किरदार निभा रही है इस किरदार में, वो दिख रही है मतलब गौरी हेगड़े, और दमदार निडर ऑफिसर ऐसा उनका रोल है। और रिलीज से पहले जो झलक दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो कमाल है वो इस मूवी में जबरदस्त वो करने वाली है। बहुत सारी अब मूवी उनकी आ रही है जिसमें उनका कमाल धमाल का एक्शन दिखता है और उनकी अदाकारी दिखती है और मेच्योर एक्टिंग देखने को मिलती है, और इस मूवी में तो फिलहाल एक्शन ही दिख रहा है, बाकी चीजें देखने को मिलेंगी। फिलहाल जो कैरेक्टर है ना उस पर ध्यान देना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें विजय सेतुपति जो इसके लीड रोल में है उससे ये दमदार कैरेक्टर यानी तब्बू क्या कहती हैं, ध्यान से सुनेगा। हमारे अंदाज में हम पहले गोली चलाते हैं और फिर बात करते हैं। इस बात से ना मुझे एक बात समझ नहीं आई कि पहले अगर आपने गोली चला दी तो बात किससे करते हैं, वो तो गया काम से, और अगर उसको गोली नहीं लगी तो आप किस काम की, किस बात के ऐसे रौब दिखा रही हैं, किस बात का इतना एटीट्यूड है भाई। मूवी देखिएगा फिर डिसाइड करेंगे। फिलहाल उनकी ही एक मूवी अंधाधुन से ये गाना आप सुनते हैं, रहिए बीटी विद बीटी ओनली।

0: समझ गए ना क्या हुआ है। तो अब आपको बता दूं कि समय भी हो गया है कि आपसे सवाल पूछ ले, थोड़ा एक मिनट लेट हो गया, क्या फर्क पड़ता है। आपको बता दूं कि आने वाली फिल्म एक है जिसके बारे में मैं सवाल पूछने वाली हूँ, आप सब तैयार हैं या नहीं है? एकदम तैयार हैं, तो चलिए सवाल पूछ लेती हूँ और जिसका जवाब आपने दे दिया तो आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज, हमसे बात करने का मौका मिल सकता है। आपका नाम, आपका आपके शहर का नाम जरूर शामिल होगा अगर आपने जवाब दिया है तो। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। अब आप सवाल सुन लीजिए, किस अपकमिंग इंटरनेशनल फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त दिखेंगे एक साथ? किस अपकमिंग इंटरनेशनल फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त एक साथ दिखने वाले हैं, उस फिल्म का आपको नाम लिखना है। इतनी सी बात है, इतनी छोटी सी बात है, जिसका जवाब आपको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए देना है और व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर की जरूरत होगी, वही पुराना नंबर 9868107070। बहुत लंबा काम कर रहा है ये नंबर, इतना पुराना हो गया, लेकिन देखिए एनर्जी पूरी है इसमें, अभी भी पूरी जान है। देखिए मैसेजेस आने शुरू हो गए, एक बार फिर से 9868107070। इस पर आपको क्या करना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है, तभी गारंटी होगी कि आपका मैसेज शामिल होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले ले, फिर गाना सुने तो कैसा रहेगा, जैसा रहेगा आपको सुनाई दे जाएगा। फिलहाल एक गाना सुन, एक ब्रेक लेते हैं और फिर म्यूजिकल ब्रेक।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: सावधान, आपका लालच ही साइबर अपराधियों की ताकत है। कैशबैक पाओ, क्लिक करो पैसे कमाओ, रेट करो पैसे कमाओ, शेयर मार्केट में पैसे बनाओ, आईपीओ अलॉटमेंट कंफर्म पाओ, महंगी चीजें सस्ते में पाओ, तत्काल लोन पाओ, ऐसे दावों के झांसे में ना आए। साइबर अपराधियों से सावधान रहें।
4: शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को।
5: गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्यघर.gov.in। हर घर

और आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ। बॉलीवुड की बात हो रही है तो आज का दिन बॉलीवुड के लिए खास है, क्योंकि आज ना दो जबरदस्त और कमाल के एक्टर्स का भी बर्थडे है, तो उनको हम सेलिब्रेट

शेट्टी और जैकलिन फर्नांडिस हमारे दिल के बिल्कुल करीब, और 90s के दशक में सुनील शेट्टी का जलवा क्या बरकरार रहा था। और इनके डांस की बात हो, इनके एक्शन की बात हो, इनके डायलॉग डिलीवरी की बात हो, सब दीवाने हुए पड़े थे। और अभी भी जब सुनने को मिलता है, इनकी एक्शन फिल्में देखने को मिलती हैं, तो हम सब एक बार फिर से वो यादें ताजा हो जाती हैं और उस दौर में ही पहुंच जाते हैं। क्या एकदम मासूमियत चेहरे पर और साथ में मासूम सा उनका अंदाज था, जिसके हम सब कायल हमेशा से रहे हैं। मोहरा फिल्म हो, दिलवाले हो, वैसे शुरुआत तो इनकी 1992 में बलवान मूवी से हुई थी एज अ हीरो। फिर उसके बाद वक्त हमारा है, मोहरा आई। जब मोहरा आई ना, तभी ये पहचान जबरदस्त इनको दिला कर गई है। दिलवाले है, बॉर्डर है, ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, फिर हेरा फेरी को कैसे भूल सकते हैं, और सबसे जबरदस्त मूवी धड़कन, जिसमें उन्होंने एक विलेन का रोल किया। नेगेटिव रोल में भी लोगों ने इनको खास तौर से पसंद किया, और ये जो कैरेक्टर है ना, हम सबके दिल में, दिल के करीब आज भी है। और जो भी उनकी मूवीज आई, जबरदस्त रही और हिट भी रही। वैसे चेहरा देखकर कोई हीरो वाला ऐसा लुक तो नहीं था, लेकिन हाँ, बॉडी बिल्डिंग और उसके बाद एक्शन वैक्शन जो थे और डायलॉग डिलीवरी है, वो सब बहुत ज्यादा दिल को छू गई, क्योंकि काफी दिल से ये काम करने वाले एक्टर हैं। और अभी भी जब कहीं दिखते हैं या किसी भी मूवी में दिखते हैं, हम सब बहुत पसंद करते हैं इनके खास अंदाज को, और हर किसी का अपना खास अंदाज होता है। तो फिलहाल मैं चाहती हूं इनको दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देना, इनकी आने वाली फिल्मों के लिए भी हम इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अभी तो प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं, तो बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस करें या फिर एज एन एक्टर हमें देखे, हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इनसे। और रही बात जैकलिन फर्नांडिस की, जिनका आज बर्थडे है, तो इनको भी हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और इनकी इनका जो मासूम अंदाज है, मासूम सा चेहरा है और एक्टिंग है, वो हम सब घायल हैं, हम सब क्या ही बात करें। इनके एक्टिंग स्किल के साथ साथ डांसिंग स्किल्स के भी हम घायल हैं। और रही बात इनको बर्थडे विश करने की, तो हम दिल से शुभकामनाएं देते हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे फिल्में लेकर आए। मर्डर टू में जो इनको सक्सेस की शुरुआत हुई थी, वो यहीं से हुई थी। हालांकि डेब्यू इन्होंने कर दिया था इससे पहले ही, लेकिन अलादीन मूवी जो थी वो आई थी, और कब चली गई पता नहीं चला, लेकिन हाँ, एक तरह से इनको पहचान जरूर मिल गई थी, क्योंकि आईफा अवार्ड में ना स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल का इन्हीं को अवार्ड मिला था। उसके बाद जो कमर्शियल सक्सेस की बात करें, तो मर्डर टू से हुई, उसके बाद रेस टू, हाउसफुल टू, और फिर हाउसफुल थ्री, जुड़वा झलक दिखला जैसी जो छोटे पर्दे के सीजन है, उसमें भी वो दिखाई देती हैं, और जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेस एक से बढ़कर एक फिल्मों में भी हैं। तो इनको हम ढेर सारी बधाई देते हैं, इनके ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं इनके जन्मदिन पर, और कहते हैं कि आगे ऐसे ही अपनी अदाकारी से, अपने डांस से, अपनी एक्टिंग से हमें एंटरटेन करते रहिए। फिलहाल मुझे गाना समझ में नहीं आ रहा था, मेरे पास दोनों के बहुत बेहतरीन गाने थे, लेकिन क्या करें, कुछ कुछ कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एक ही गाना चलेगा। और मौका मिला तो सुनील शेट्टी का भी एक गाना जरूर चलाऊंगी, फिलहाल ये गाना। और हाँ, सुनील शेट्टी और जैकलिन दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की।

इस इंटरनेशनल फिल्म में, आने वाली किसी फिल्म में इंटरनेशनल लेवल पर ये मूवी बन रही है, किस मूवी में सलमान खान और संजय दत्त एक साथ दिखने वाले हैं? बस इसके बारे में आपको बताया था, अब आपको बताना है। यही आज की क्विज है जिसका जवाब देकर बन सकते हैं आप बॉलीवुड सरताज, और आपको व्हाट्सएप मैसेज करके आंसर देना है। ऑलरेडी बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं, अगर आपने मिस कर दिया था तो एक बार सवाल रिपीट कर दिया है। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है 9868107070 पर। अपना नाम, अपने शहर का नाम पहले लिख दीजिए, और अभी लौट कर आऊंगी ना तो आपका नाम पढ़ना शुरू कर दूंगी, उसके बाद बॉलीवुड सरताज को लेकर आऊंगी, तो मिस मत कर दीजिएगा। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक, बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स, बबीता त्रिपाठी के साथ।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सबका इंतजार हुआ खत्म, आप सबके मैसेजेस की लाइन लगी पड़ी है और उस लाइन को हम ढूंढ रहे हैं शुरुआत कहां से करें। यस, शुरुआत करते हैं जहां से शुरुआत हुई थी, वहीं से। सबसे पहले मुझे जैनन त्यागी मोदीनगर से लिखते हुए नजर आ रहे हैं और उससे पहले भी मैसेजेस आए हैं लेकिन वो जो आंसर है ना उससे रिलेटेड मैसेज नहीं है, तो सो सो सो सॉरी, कोई बात नहीं। रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से लिख रहे हैं और कान्हा मेरठ से लिख रहे हैं। राजकुमार संतानी अकोला महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। दिनेश कहाँ से लिख रहे हैं नहीं दिख रहा है अभी। सुनीता शर्मा शालीमार बाग से लिख रही है और रंजन कुमार गुलाब सिंह बुराड़ी से लिख रहे हैं और ये भी दिल्ली में ही है। और सूरत से किसका आंसर आया है, राहुल कुमार का आया है। विनोद सोनी का मैना चौक बठिंडा से, अनूप साहू का कहीं से दिख रहा है मैसेज। उसके बाद आंसर सबसे पहले किसने लिख दिया भाई, संजय ने, नहीं, संजय इन्होंने आंसर लिखा है लंबा चौड़ा और सबसे पहले अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखा भी है लेकिन वो छिप इसलिए गया क्योंकि लंबा इन्होंने आंसर लिख दिया। कंचन सोनिया विहार दिल्ली से लिख रही हैं। मोहम्मद इम्तियाज भी दिख रहे हैं दिल्ली से ही और मिसेस धर्मभाटिया रोहतक से, दानिश खतौली से और अगला मैसेज मोनिश का दिख रहा है और तौसीफ अहमद का दिख रहा है श्रीनगर से। मोनिश बिलासपुर से लिख रहे हैं और संजय खत्री कोल्हापुर महाराष्ट्र से, सुखलाल बाला ये कहाँ से हैं, शायद कहीं कहीं से तो हैं, कहीं से तो हैं पक्का, वेस्ट बंगाल से हैं। और तनुजा शाह का महाराष्ट्र से और आशीष शर्मा का और पल्लवपुरम ये कहाँ पे है भाई, मेरठ में है। और नेक्स्ट भवाना हरियाणा से मनोज कुमार का मैसेज दिख रहा है। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से दिख रहे हैं। अमरिंदर कुमार रांची से, सलमान, अरे भाई लंबा चौड़ा मैसेज क्यों लिखा, आपका नाम शामिल नहीं होगा तो फिर आप मत कहिएगा सोनू बिजनौर वाले। दीपा बिजनौर से लिख रही हैं और नेक्स्ट मैसेज दिख रहा है किसका भाई, फिल्म की पूरी डिटेल लिख डाली, अपना नाम पहले लिख दिया था, सही बात है लेकिन इतनी डिटेल लिखेंगे तो छुप जाएगा। वरुण वाष्णेय लिख रहे हैं अलीगढ़ से और भुवनेश्वर नेताम ग्राम

कुछ पूरा एड्रेस लंबा सा है, सही जवाब है, लेकिन अपना नाम भी सबसे पहले लिखते, शायद ये भुवनेश्वर इनका नाम ही है। यस, और प्रोग्राम अच्छा है, ठीक है, उमेश कुमार खयाला से। थैंक यू सो मच उमेश। सुमन का भी मैसेज सोनीपत आसाम से दिख रहा है, और भी मैसेजेस हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है ना, लंबा चौड़ा आंसर लिखा है और उसके बाद फिर अपना आंसर लिखा है या नाम लिखा है, तो क्या करें, हमने तो आपको कहा था सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम और आंसर, फिर देखिए आपका नाम जरूर शामिल होगा। अब मेरी ड्यूटी ये है कि मैं ढूंढ कर लाऊं उनमें से कोई एक बॉलीवुड सरताज। अब नेटवर्क में रहने की जिम्मेदारी आपकी है, फोन उठाने की जिम्मेदारी आपकी है, फिर ना कहिएगा शामिल नहीं हुआ, और हमें तो कभी बॉलीवुड सरताज बनाते ही नहीं है। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो जरूर बॉलीवुड सरताज कभी न कभी बनेंगे ही बनेंगे।

0: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

0: ये आकाशवाणी रेनबो और आप सबका इंतजार हुआ खत्म। और खास तौर से हमारी जो बॉलीवुड सरताज हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं आप सबसे बात करने के लिए, उनका इंतजार भी हुआ खत्म। तो चलिए सुनते हैं उनकी जुबानी, उनकी कहानी। हेलो
1: हेलो आरती मैम, नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं आप, प्लीज बताइए।
1: जी। मैं हाँ जी मैम, मैं सुमन कर्मकार सोनितपुर आसाम से। हाँ
0: असम से सुमन, आपका बहुत बहुत स्वागत
1: जी, थैंक
0: आकाशवाणी रेनबो पर।
1: यू मैम।
0: पता है आपकी एक्साइटमेंट देख के मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है आपसे बात करके क्योंकि जब मैंने आपको कॉल मिलाया आप इतनी एक्साइटेड हो गई थी, मुझे लगा कि ये एक्साइटमेंट वाली बात तो है
1: हाँ जी मैम,
0: तो सुमन सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए और देखिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आकाशवाणी रेनबो आपको कभी भी कॉल कर दे बॉलीवुड सरताज बनाने के लिए, और अगर
1: जी
0: विश्वास रखेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है ना।
1: मैम, जी
0: आपने मान लिया कि ये सचमुच में कॉल आई
1: मैम, क्योंकि मैं सुन रही थी ना, मैं प्रोग्राम
0: है चलिए ठीक है,
1: सुनती रहती हूँ मैम रेनबो का। जी
0: बहुत अच्छी बात है और यही हम चाहते हैं कि आपको खुश करें, सरप्राइज दें और आपको बात करने का भी मौका मिले, जुड़ने का मौका मिले। तो सुमन मैंने पूछा
1: जी
0: किस अपकमिंग इंटरनेशनल फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त एक साथ दिखने वाले हैं।
1: जी मूवी का नाम है 7 डॉग्स मैम। जी
0: सेवन डॉग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉलीवुड सरताज बनने के लिए
1: थैंक यू मैम।
0: सुमन आसाम का मौसम कैसा
1: जी
0: है?
1: आसाम का मौसम अच्छा है मैम, ना
0: अच्छा है,
1: ज्यादा धूप नहीं आज। ठीक जी, मतलब
0: धूप नहीं है, मतलब बारिश हो रही है कि नहीं वहां पे?
1: बादल छाए हुए हैं मैम, मौसम अच्छा है।
0: मौसम अच्छा है, चलिए ठीक
1: जी
0: है, एंजॉय कीजिए मौसम को और आपके दिन को भी। और आपने बताया कि आप टीचर हैं, आज छुट्टी ली है तो देखिए
1: जी
0: आपका दिन बन गया, और छुट्टी इसीलिए ली थी,
1: जी
0: आज
1: मैम,
0: बॉलीवुड सरताज बनने का दिन था
1: जी
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुमन, ऐसे ही आकाशवाणी रेनबो से जुड़े रहिए, ठीक है,
1: ठीक है, थैंक यू
0: ओके बाय।
1: मैम, बाय मैम।
0: ये थे सुमन, आप सुनते रहे आकाशवाणी रेनबो ऐसे ही सरप्राइजेस के लिए और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम एंजॉय करेंगे इस शो के बाद, उसके बाद फिर बच्चों का मानसिक विकास, सॉरी दीपिका जैन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो बताएंगे इसके बारे में 1 बजे, और इसको सुनना मत भूलिए, बोलिएगा रिकॉर्डेड प्रोग्राम होगा, आपके बहुत काम आएगा। फिलहाल मुझे बबीता त्रिपाठी को दीजिए इजाजत, बाय बाय।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: श्री बिरला ने संसद में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में लगातार इस तरह की स्थिति से वे व्यक्तिगत रूप से आहत हैं। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवानियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड विधानसभा के पास कल हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
2: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए। आज तड़के पुणे बंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक से जा टकराई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: इस प्रोग्राम दी वाचक रहूंगी मैं यानी कि ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 11 अगस्त दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी बठिंडा ते प्रोग्राम हर अकाल उस्तत।
1: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, मिति 12 अगस्त दिन बुधवार नू शाम 5:30 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम अखर बोलदे ने। ते साडा इस वार दा विशा होएगा जिंदगी दी सार्थकता।

0: ने कहा कि संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ने कल स्पष्ट किया कि गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे से जवाब देने लिए तैयार ने। उन्होंने विरोधी धिर के मैंबरों को सदन के सुचारू कामकाज में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: हंगामा जारी रहने श्री बिरला ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ संसदीय पार्टी की हफ्तावारी मंगल मिलन मीटिंग नवी दिल्ली के संसद भवन कॉम्पलैक्स हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रधान नितिन नवीन ते होरना नेतावां ने मीटिंग दौरान तिरंगा लहराया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सूबे ते देश की सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण, सरहद ते सुरक्षा मजबूत करन, हथियारबंद बलों च पंजाबियों की भर्ती नूं उत्साहित करन ते सेवा कर रहे सैनिकां ते साबका सैनिकां दी भलाई लई पंजाब सरकार ते भारतीय फौज दरम्यान वधेरे मजबूत सहयोग दा सदा दित्ता। कल चंडीगढ़ विखे फौज मुखी जनरल धीरज सेठ नाल हुई मुलाकात दौरान मुख मंत्री ने कौमी सुरक्षा ते पंजाब नाल संबंधित फौजी मामलों ते चर्चा कीती, जिन्हां च सरहद पारों हुंदी तस्करी नूं रोकण लई ड्रोन विरोधी उपावां नूं मजबूत करन दी लोड़ वी शामिल सी। मोहाली स्थित अमेठी यूनिवर्सिटी विखे श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित एक सूबा पदरी सैमीनार करवाया गया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस मौके मुख मेहमान वजों शिरकत की। श्री चीमा ने कहा कि अज सानू गुरु रविदास जी की बाणी नूं समझण की जरूरत है ते इसे तहत पंजाब सरकार वल्लों जिला जलंधर विखे बल्ला नेड़े एक अध्ययन केंद्र दा नींह पत्थर रख्या गया, जिस नाल आने वाली पीढ़ी नूं इस केंद्र तो ज्ञान ते बाणी बारे जानकारी मिलेगी। इस मौके रविदास संप्रदाय नाल जुड़े कई बुद्धिजीवियां खासकर होरालगढ़ तो भी संत उचेचे तौर ते पुजे, जिन्हां श्री गुरु रविदास जी की बाणी बारे विचार सांझे कीते। इस मौके गुरु रविदास जी के जीवन बारे एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। पंजाब सरकार ने नशा खिलाफ अपनी लड़ाई नूं मजबूत करने लिए पिछले हफ्ते युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम तहत 12 जिलों च एक व्यापक अध्यापक जागरूकता ते समर्था निर्माण प्रोग्राम शुरू किया है। पंजाब के सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि सिखलाई मॉड्यूल इस तरह तैयार किया गया कि अध्यापकों नूं किशोरों के मुद्दों, उन्हां दी मानसिक सेहत ते भावनात्मक तंदुरुस्ती का बेहतर विचार होवे। अध्यापकों नूं नशा की दुरवरतों नाल जुड़े जोखमां बारे भी जाणू करवाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार इस मुहिम तहत नौजवान पीढ़ी नूं नशा तों दूर करके बेहतर जीवन जीण लई प्रेरित ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੋਕਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਾਰਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 2 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਾਰਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਪਾਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਰੀ ਝੰਡਾ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੂਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖਬਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:40 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। 1:15

0: विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार है, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
3: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांति पूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
4: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृह मंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
5: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और

0: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मॉनसून की बदलती स्थिति और एलनीनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
2: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत

0: बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हुण तुसीं सुन रहे सी हिंदी विच समाचार FM 101.1 MHz ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਜੀ 2:03 ਦਾ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੀਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ।

0: कल जदो जेठ ने वगा के सोटी मारी सौ तेरी लंगी मेरे कान कोल दी इथे रख दे कराया
1: केड़ी गल दा
0: असि पेकिया नु चले
1: मैं नी कल दा
0: पावे छड पावे मार हुंदी होर ना सहार ओदी जित।

0: एक होर नी
1: दस केड़ा हरामी
0: तेरा जोर नी
1: जे बने मेरा हामी सस घर बदनामी आया रहिंदा सदा घर चुप चालवे कम मगरों गणौंदी पहलों गालवे कम मगरों गणौंदी पहलों गालवे
0: दड़ वट के गुजारा करनी
1: कम मगरों गणौंदी पहलों गालवे
0: दड़ वट के

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्यों क्या कैसे कहाँ
2: बस ऐसे ही जैसे
1: अब ये जो शब्द है आप चौंक गई ना अचानक।
2: बिल्कुल एकदम चौंक।
1: लेकिन आपने पूछा मन में सवाल आया होगा कि अचानक ये क्यों पूछ रही है।
2: बिल्कुल इसीलिए
1: क्यों बोल
2: तो
1: रही है
2: ऐसा वैसा जैसा कह के।
1: तो बस होता क्या है कि ये जो सवाल है ना जो मन में सवाल पैदा होते हैं यही जिज्ञासा पैदा करते हैं। अगर हमारे मन में सवाल खत्म हो जाए तो जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। जहां से सृजन की यात्रा शुरू होती है तो अगर आपके मन में कौतूहल हो रहा है जिज्ञासा हो रही है तो समझ लीजिए कि आप कहीं जानकारियों का खजाना अपने भीतर पैदा
2: बिल्कुल
1: करेंगे।
2: और आपका ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा ममता जी क्योंकि हमारे अंदर एकदम से लगा कि क्या पूछ लिया। तो थोड़ा मजा भी आता है जब ऐसी हाँ, सखियां मिलकर ऐसी मस्ती करती है।
1: बिल्कुल
2: अच्छा
1: और ये कहा जाता है ना जिज्ञासा जितनी ज्यादा होगी जितनी गहरी होगी सृजन की यात्रा भी उतनी ज्यादा होगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आज का हमारा विषय भी यही है सृजन का स्रोत और जिज्ञासा।
1: बिल्कुल
2: और सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे महिला उद्यमी ऋचा कर जीवामे की संस्थापक है इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में घोड़े बेचकर सोना तो इसके बारे में बात किया जाएगा। और हल्की फुल्की बातें में चले मेला देखने यानी कि हमारे जो साथी हैं वो घोड़े बेचकर सोना के बारे में अपने अपने अनुभव लिखें और कुछ बातें भी लिखें। और मेला देखने कब गए क्या खरीदा क्या देखा वहां की कुछ ऐसी किस्से याद हो तो वो छोटी छोटी सी उसमें लिखें चार चार लाइनों में पांच पांच लाइनों में तो मजा आएगा।
1: वैसे तो विषय में ही शब्द छुपे पड़े हैं घोड़े बेचकर सोना घोड़ा है। जब मेला देखने जाते थे तो हाथी घोड़े मिट्टी के हाथी घोड़े होते थे ना और वो ढेर सारे खरीद के लिए आते थे और उसमें शक्कर की मिठाइयां जो होती थी उसमें हाथी घोड़ा और वो अलग अलग आकृतियां बनी होती थी तो उसमें चुना जाता था कि हाथी लेंगे या घोड़ा लेंगे या हंस और चिड़िया बनी रहती थी। और वो दिवाली पर खासतौर से
2: दिवाली
1: प्रसाद के रूप
2: खिलौने मिट्टी के
1: चढ़ाए जाते
2: थे खिलौने आते थे
1: और मेले में वो मिट्टी के खिलौने की खोज जरूर होती थी जब हम छोटे थे कि वो चक्री होती थी और जात छोटे छोटे चिमटे बेलन और
2: रसोई का जो छोटे छोटे सामान होता था वो लकड़ी के भी बिकते थे और
1: मिट्टी के भी
2: मिट्टी के भी बिकते थे
1: और बाद में चीनी मिट्टी के
2: और बड़े सुंदर रंग भी होते थे गुलाबी सफेद पे गुलाबी हरा ऐसे लाइन करके बड़ा।
1: आप कौन सा रंग खरीदती थी
2: जो वहाँ पे मिल जाते थे गुलाबी हरा इसलिए क्योंकि वही
1: जाहिर सी बात है जो रंग
2: बोला है वही
1: पसंदीदा रंग होता है उसी को हम जाके चुनते थे और कई बार रंग उस रंग का न मिलने के कारण मेले में भटकते भी थे। और ऐसा भी होता था कि मेले में जा रहे हैं तो सिर्फ खिलौने ही नहीं मिलेंगे हर चीज मिल जाती थी।
2: बिल्कुल
1: अब तो जो मेला है वो मोबाइल पर और स्क्रीन पर होता है
2: लेकिन उन मेलों की यादें बहुत अच्छी हैं ताजी हो जाएंगी सबकी आज जब बातें करेंगे है ना।
1: और मेले में और भी तो कुछ होता था वो तो हिंडोला झूला होता था
2: तरह तरह के झूले होते थे तो उसका भी एक अलग मजा आता
1: और मेले में एक डर भी होता था अपने बड़ों का हाथ छूट जाने का माता पिता
2: जाने का फिर जब अनाउंसमेंट होता था तो फिर ढुंढाई मचती थी कि कौन कहा ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं लेकिन फिर भी मेला जाना तो
1: एक मिनट के लिए भी अगर हाथ छूट जाए तो बस डर का ज्वार मन में आ जाता था कि अरे माँ कहाँ गई अभी हम कहीं खो न जाए गुम न जाए भीड़ में। तो मेले का एक अलग अनुभव होता है सबके भीतर एक मेला होता है उन मेले का अनुभव होता है उन अनुभवों को हमारे श्रोता साझा करें और कोई एक छोटी सी घटना याद हो तो लिखें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और घोड़े बेचकर सोना ये मुहावरा है मुहावरे बहुत सारे हैं दिन भर चले अढ़ाई कोस या फिर ऐसे बहुत सारे मुहावरे
2: जो आंगन टेढ़ा बहुत सारे हैं।

0: और बड़े बुजुर्ग, हमें याद है कि दादी नानी मुहावरों में, लोकोक्तियों में बात किया करते थे, लेकिन अब ये समय जैसे खत्म हो रहा है, तो इन्हें जिंदा रखने के लिए कभी चर्चा तो करनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो किन्हें कितने मुहावरे याद हैं, लिख भेजे हमें,
1: क्या बात
0: और
1: है,
0: अब हम क्या करें बताइए।
1: हम तो गीत सुनते हैं।
0: चलिए।

0: मंजरी जी, देखिए अपने पास विविध भारती के फेसबुक पेज पर श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार
1: जी
0: आ रही हैं, और एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि मैं बेटी के घर बर्लिन से सखी सहेली सुन रही हूँ। क्या बात है, अभी यहाँ सुबह का टाइम 11:33 है, हल्की सी ठंड है, दिन में थोड़ा गर्म हो
1: क्या
0: जाएगा।
1: बात है, आप इतनी दूर से सुन रही हैं तो मेरा हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार, है
0: और
1: ना?
0: शुक्रिया कि
1: शुक्रिया
0: सुन रही है,
1: जी,
0: और बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर तक विविध भारती की आवाज गूंजती
1: गूंजती है,
0: है,
1: सही बात है ममता जी।
0: और जिज्ञासाएं भी बहुत सारी पैदा होती हैं जब हम कहीं दूर होते हैं तो, और जिज्ञासा का घर होता है।
1: जैसे
0: और
1: जिज्ञासा में उन्होंने देखी, हम लोग सोच ही सकते थे
0: हाँ
1: कि बर्लिन में क्या क्या मौसम है, कैसा मौसम है, तो उन्होंने बता ही दिया, तो हमारी जिज्ञासा जो थी उठी थी वो शांत हो गई।
0: बिल्कुल सही बात
1: जी
0: है। और अब तो जिज्ञासा शांत करने का बहुत बड़ा अपने पास औजार है, वो है
1: जी
0: गूगल मास्टर।
1: जी
0: जैसे मन में कोई कौतूहल होता है तुरंत गूगल पर जाकर लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन एक समय था जब आपके भीतर कोई जिज्ञासा है तो उसको शांत करने के लिए बड़ों की शरण में जाना पड़ता था,
1: हाँ
0: टीचर्स की शरण में जाना
1: बिल्कुल।
0: पड़ता था।
1: और साथ साथ हम लोग किताबों में भी पढ़ा करते थे, ढूंढ के पढ़ते थे कि इसमें क्या है, किसके बारे में क्या लिखा गया है, तो किताबों को पढ़ने का एक अलग ही
0: और
1: मजा था।
0: किताबें पलटते हुए हम जब एक दो पन्ने पलटते तो उसमें और भी चार जानकारियां मिल जाती
1: जी
0: थीं।
1: बिल्कुल। और जब हम अपने आसपास की चीजों और वस्तुओं, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों और लोगों को देखते हैं ना ममता जी, तो कभी कभी लगता है कि उनका आकार कैसा है, रंग रूप, बोली भाषा और छोटी बड़ी सभी वस्तुओं के बारे में सोचते हैं कि ये क्या है, कैसी है, कैसे बनी है, कब बनी है, किसने बनाया और कहाँ से आई, क्यों, जैसे सवाल मन में उठते हैं, तब जिज्ञासा का जन्म होता है। जिज्ञासा होने से ही सृजन के स्रोत का जन्म होता है, जैसे आपने शुरू में पूछा ही था कि क्यों कब, तो वही चीज है।
0: और ये जो सृजन का जन्म होता है तो जिज्ञासा से, तो इस जिज्ञासा को शांत करना बहुत जरूरी है, खास तौर से बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। और एक जिज्ञासा मेरे मन में भी उठी है कि इस समय 3:15 होने को है, तो क्या किया जाए?
1: अंतराल लिया जाए,
0: लेते हैं।

विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और बात जिज्ञासा की चल रही थी। मंजरी जी, जब जिज्ञासा की बात हम कहते हैं तो छोटे बच्चों में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं और कई बार माता पिता अपनी व्यस्तता के चलते उन्हें शांत नहीं करते बल्कि इग्नोर कर देते हैं और टाल देते हैं, कई बार डांट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं की गई तो

0: आगे चलकर वो पूछना ही बंद कर देंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे बच्चे पूछते भी ना कि मम्मी देखिए आसमान में चांद क्यों निकला है, रात में क्यों निकलता है, तारे क्यों झिलमिला रहे हैं, इस तरह के बच्चे बातें पूछते हैं, और सूरज इतना गर्म क्यों होता है। तो अगर आप उन बच्चों को सही से जवाब देंगे तो वो उनको बहुत समय तक याद रहेंगे, और उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो भी उस समय उनको उत्तर जब मिल जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो कहना चाहिए जिज्ञासा हर किसी में होनी चाहिए किसी भी विषय को जानने की, और अगर वो प्रश्न करते हैं किसी सामने वाले से तो उसको भी सही जवाब देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें लिख रहे
1: जी
0: हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सृजन का स्रोत जिज्ञासा, ये सत्य है कि कुछ नया रचने जानने या आविष्कार करने की प्रेरणा हमेशा मन की उत्कंठा या सवाल पूछने की आदत से ही पैदा होती है। जब तक मन में ये क्या है, ये काम कैसे करता है जैसे भाव नहीं उठते, तब तक किसी नए विचार या कला का जन्म संभव नहीं है। जिज्ञासा और सृजन का संबंध मन में उठने वाला एक छोटा सा प्रश्न नए रास्ते खोलता है। जिज्ञासा इंसान को उत्तर तलाशने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल। और ममता जी इसी तरह एक साथी हमारे लिखते हैं कि जिज्ञासा ही सृजन की पहली सीढ़ी है। जब मन में किसी बात को जानने और कुछ नया खोजने की चाह जागती है तभी नए विचार जन्म लेते हैं। जब मन में सवाल आते हैं तो दिमाग जवाब ढूंढने लगता है, यहीं से सृजन की शुरुआत होती है। कुछ नया रचा जाता है, फिर वह कविता का रूप हो चाहे विज्ञान के रूप में आता है। जिज्ञासा ही नई कल्पनाओं को जन्म देता है और वही साकार रूप लेकर हमारे सामने आती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि जिज्ञासा जन्मजात गुण है, हर इंसान के भीतर होता है। यह न केवल ज्ञान के बंद दरवाजों को खोलने वाली पहली चाबी है, बल्कि जीवन को रोमांच, नए अनुभवों और अंतहीन संभावनाओं से भरने का एकमात्र जरिया भी है। और आगे इन्होंने लिखा है कि विविध भारती से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिज्ञासा इसीलिए ही हमें बहुत पसंद है।
1: क्या बात है, इतनी बढ़िया से उन्होंने तारीफ करी है। और जिज्ञासा सृजन का मूल स्रोत है, ये लिखते हैं हमारे साथी। और सुरीली धड़कन विविध भारती पर भी जिज्ञासा से भरी सृजन रूपी गंगा बहती रहती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे कुछ ना कुछ नया जानने की, खोजने की, और खोज के बाद उसका सृजन करने की इच्छा जागती रहती है। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं तब भी विज्ञान, कला, साहित्य और आविष्कारों की शुरुआत होती है।
0: अभी गाना सुन लेते हैं, फिर
1: जी
0: और बातें करते हैं।

कहा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं, हो झूठा है ये गुस्सा तेरा।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में हम बातें करते हैं शिक्षा की, सेहत की, खेलकूद की और महिला उद्यमी की, और कई बार रसोई की भी बातें करते हैं। गांव से शहर तक, शहर से महानगर तक, महानगर से विदेशों तक भी हमारी आवाज गूंजती है।
1: बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें होती है ना, तो जो हमारी महिलाएं जो निराशा के उसमें चली जाती है, तो वो ये सुन करके बहुत उत्साहित होती कि उन्हें हमारी बातों से उन्हें कुछ ना कुछ नया करने की एक सीख मिली है।
0: हौसला अफजाई भी
1: जी
0: करती है सखी सहेली, है ना। तो अब हम अगले विषय पर पहुंचते हैं और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाते हैं कि देखते हैं कि हमारी सखियों ने और हमारे सखाओं ने क्या लिखा है, क्योंकि सखियों के साथ साथ सखा भी हमारे ये कार्यक्रम सुनते हैं।
1: बहुत रोचक तरीके से सुनते हैं हमारे सखा।
0: जी,
1: तो
0: तो हमारे एक सखा की टिप्पणी आई है जिन्होंने लिखा है कि भाई सखी सहेली कार्यक्रम हमें बहुत पसंद है और मेले के बारे में अपने जज्बात साझा किए हैं। हमारी एक
1: बिल्कुल
0: सखी हैं जो लिख रही हैं कि मेले को आज भी मनोरंजन का विशुद्ध साधन माना जाता है। बचपन में पापा की उंगली थाम कर न जाने कितने मेले देखे और जरा जरा सी चीजें खरीद कर जो मन को तसल्ली मिलती थी। मेले में देहाती फनकारों के हुनर काबिलियत की पेशकश देखना एक अलग ही आनंद देता था।
1: जी
0: पहली बार कठपुतली का नृत्य मैंने मेले में ही देखा था। मनोरंजन का ये खेल तमाशा दुनिया के किसी भी मेले में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बचपन छूटने के साथ ही मेला देखने जाने का उत्साह भी पीछे छूट गया, मगर मेरे शहर में पुरानी संग्रहालय की चीजों का और पुस्तक मेला समय समय पर लगता रहता है।
1: बिल्कुल, मेले की बात ही कुछ और होती है क्योंकि वहां पे इतनी सारी चीजें होती हैं, खाने पीने से लेकर के घर गृहस्थी के सामान हैं और बहुत सारी हस्तकला भी जो होती है वहां पर देखने को मिल जाती हैं। तो जिसको जैसी जरूरत होती है वो वहां से उसी हिसाब से खरीद के लाता है, चाहे वो रसोई से जुड़ा हुआ सामान और कपड़े भी बहुत होते हैं, चटाइयां, दरी हैं, तरह तरह के कपड़े वो भी वहां बने बनाए मिलते हैं मेलों में। तो सब लोग बहुत शौक से मेला देखते हैं और खरीदते
0: और
1: भी हैं।
0: मेले में जगहों के बारे में भी पूछते हैं। अब
1: जी
0: हमारे कुछ श्रोता जिज्ञासा की ओर फिर पहुंच गए हैं जो हमने सब्जेक्ट दिया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा 7 साल का पोता है, मुझसे बड़े सवाल पूछते रहता है। मुझे पता होता है तो बता देती हूँ, पता नहीं होता तो तुरंत तुरंत गूगल में सर्च करके बताती हूँ। इससे मेरे पोते की जिज्ञासा तो शांत हो जाती है, लेकिन मेरा भी सामान्य ज्ञान बढ़ता रहता है।
1: बिल्कुल, और इसी तरह एक लिखते हैं कि जिज्ञासा हर प्रकार के सृजन, आविष्कार और ज्ञान की मूल आंतरिक प्रेरणा है। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं, तभी किसी नए विचार, विज्ञान या कला का मार्ग खुलता है।
0: और अब एक गाना सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी जी, इसमें कितनी सारी बातें होती हैं सखी सहेली में,
1: जी
0: शिक्षा की बातें, खेल की बातें और महिला उद्यमी की बातें करते हैं। अब देखिए ना, आज हमने विषय मेला भी दिया है, तो
1: जी
0: मेले की कितनी सारी टिप्पणियां श्रोताओं की आई हैं। हमारे कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि हम मेले में जाते थे,
1: जी
0: गुम हो जाते थे। कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि मेले का इंतजार रहता था साल भर, और गांव में जब मेला लगता था तो बाकायदा ऐलान किया जाता था
1: जी
0: कि मेला लगने वाला है, तो वहां से खिलौने खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे,
1: जी
0: किताबें, और अब तो किताबों का भी मेला लगता है।
1: और मेले में ममता जी, वहां पर गुड़ के सेव हैं, चक्की है, लड्डू है, लोइया के लड्डू, खील के लड्डू, ये सब भी बहुत बिका करते थे। और आइसक्रीम खाने का चाट के ठेले लगते थे, तो उसका भी एक अलग मजा आता था। और मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, श्रृंगार के कितने सारे सामान होते थे, चूड़ी बिंदी। और मुझे याद है कि वो जो बड़े बड़े रिबन हुआ करते थे, वो उस समय भी

0: के लाते
1: और
0: थे
1: एक चीज
0: जी
1: कि हिंडोला होता था और
0: जी
1: बड़े वाले हिंडोले पर बैठने पर डर बहुत लगता था।
0: जी
1: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मैं सिर्फ एक बार ही मेला गई थी मेरे दोस्तों के साथ करीब 4 साल पहले दशहरे के मेले में। वहां से मैंने एक लकड़ी की हेयर स्टिक ली थी जो अभी भी मेरे पास है, और वहां मैंने एक छोटे बच्चों का टी शर्ट देखा था जिसके लिए मैंने बहुत जिद की थी पर मुझे मेरे दोस्तों ने नहीं लेने दिया।
0: और देखिए हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेले की बात कर अपनी बचपन की बहुत यादें सामने से गुजरी हुई दिखाई दी। हमारे जमाने में मेला देखने जाना ऐसा होता था कि कहीं कोई दूसरी ही दुनिया में घूमने जा रहा है। मैं अपने चाचा जी के पास रहती थी तो वहां मेला लगता था मेरे घर के सामने ही, रोज ही देखती थी। और दशहरा का मेला तो देखने हम सब भाई बहन चाचा जी के साथ देखने जाते थे। वाकई में मेले से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। बाइस्कोप होता था, वो घिसी हुई आइसक्रीम होती थी है ना, जो बर्फ का गोला जिसे
1: बर्फ का
0: कहते हैं
1: गोला, और
0: वो।
1: उसमें रंगीन
0: जी
1: मांगते थे कि ऑरेंज नारंगी कलर का दो,
0: जी
1: और कोई काले काला खट्टा काला वाला लेते थे
0: बिल्कुल
1: और वो पूरे ओठ रंग जाते थे। तो उसमें फिर
0: जी
1: उस समय तो मोबाइल था नहीं कि तस्वीर
0: फोटो
1: खींची
0: खींच
1: जाए,
0: लें।
1: पर किसी गांव में किसी के पास कैमरा हुआ करता था बड़ा वाला, तो कैमरा ले आके उसके पास जाते थे कि उस कैमरे से फोटो ले ली जाए, फिर वो फोटो प्रिंट करवा के मिलती थी बहुत मिन्नत करने पर।
0: बिल्कुल। और कई कई मेलों में होता भी था ममता जी, पर्दे लगा करके वो चांद तारा है और
1: हाँ
0: क्या कहते हैं मोटरसाइकिल रखी है उस पर फोटो खींचने के लिए सुविधा बनी रहती थी। तो हम लोग ने भी बहुत इस तरह से कि ऐसे चांद है उसके ऊपर बैठ के फोटो खिंचा रहे, जैसे लग रहा हम आसमान की सैर कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हैं कि अरे वाह हम तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो इस तरह की फोटो जब देखते हैं वापस एल्बम में तो मेले की यादें ताजा हो जाती है। और मेले में जो एक आता था गुलाबी कलर का पैकेट में बंद होता था, बुढ़िया के बाल जिसे कहते हैं, वो भी हम लोग खरीदते थे क्योंकि उससे ओठ और जबान लाल हो जाती थी तो बड़ा मजा आता था। तो मेले में कहना चाहिए कि सब चीजें, और वहां पे डांस वगैरह भी होते थे पशुओं के, तोता को दिखाया जा रहा चढ़ रहा उतर रहा है पर्ची निकाल रहा है, इस तरह की
1: कठपुतली का नृत्य
0: कठपुतली का
1: दिखाया
0: डांस।
1: जाता था, वो
0: हाँ
1: बहुत आनंद
0: जी
1: आता था। और जो लोक नृत्य दिखाए जाते थे उसकी तो छटा अलग ही
0: जी
1: होती थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया और मोबाइल ने हम लोगों को कुछ इस कदर मोहपाश में बांधा है कि देर रात तक हम अपने सुख चैन और आंखों को मोबाइल के हवाले कर देते हैं, फिर लेट नाइट घोड़े बेचकर ऐसे सोते हैं कि सीधे दोपहर ही जागते हैं, और मोबाइल की लत ने हमें घूमना फिरना मेलों ठेलों का मोह भंग कर दिया है। दशहरा मेला हो, चाहे नवरात्रि का मेला हो, व्यापार मेला हो, कोई सांस्कृतिक मेला, बच्चों को कहो कि चलो भाई सब चलो, कुछ बाहर की रौनक देख कर आते हैं। इस पर बच्चे कहते हैं भला भीड़ भाड़ में धक्के खाने कौन बाहर जाएगा, हम घर पर ही रहकर ये सब कुछ मोबाइल के जरिए रील में देख लेंगे। मगर मोबाइल और सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग के चलते गाँव देहातों में मेलों का क्रेज आज भी बरकरार है। मेले हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा की अनूठी मिसाल है, और इसे जीवित रखने के लिए समय समय पर मेलों का आयोजन होते रहना चाहिए।
0: जी और एक लिखते हैं ममता जी कि मेले तो बहुत गए हैं, बचपन में पानी वाली बॉल अक्सर लाते थे और बहन के लिए मिट्टी के घड़ी घंटी और चूल्हा हांडी तवा बेलन चकला वगैरह लाते थे, बहुत सुंदर सुंदर होते थे ये डिजाइन। और एक लिखते हैं पहले मेले मंदिर के चौगान में लगते थे जो दर्शनार्थी दर्शन करते और कुछ आनंद लुटाते थे, अब मेले बड़े शहर में लगने लगे हैं, गाँव में बंद हो गए हैं। और
1: एक
0: जी
1: श्रोता ने लिखा है कि हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत हमने मेले के बारे में लिखा है कि मेला देखने आज मैं जाती हूं, मैं अपना अनुभव शेयर करने कर रही हूं। जब मैं बचपन में मेला देखने जाती थी तो मुझे खिलौने का बहुत ज्यादा क्रेज रहता था, मेला देखेंगे ये खिलौना मिलेगा, वो खिलौना खरीदेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, और इस चक्कर में मैं तो जाती खिलौने देखने और खाने। कितनी बार मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता है कि ये बहुत ज्यादा खिलौने की जिद कर रही है, और वहीं पर मेले में इस बात को लेकर मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता, मेरे खिलौने की जिद को लेकर ये मेरा बचपन का सबसे ज्यादा अनुभव रहा है मेला देखने का। वैसे मेरा मेला देखने का मजा अलग ही होता है, वहां जाकर खिलौने खरीदना, अब चूड़ियां खरीदना, खाना, बहुत ज्यादा मजा आता है। अब तो मेले में सब कुछ एक साथ मिल जाता है,
0: बिल्कुल
1: मतलब खाने के अलग-अलग स्टॉल भी होते हैं और चीजें तो अभी मिलती हैं, अभी भी मेले लगते हैं,
0: बिल्कुल
1: अभी मुंबई जैसे महानगर में भी मेला लगता है जहां पर पूरे देश की
0: चीजें
1: लोग आते
0: दिखाई
1: हैं और चीजें मिलती हैं वहां पर, बहुत सारी लोक संस्कृति की चीजें होती हैं, लकड़ी के खिलौने,
0: जी
1: लकड़ी के बर्तन और तरह तरह के अचार भी मेले में मिलते हैं।
0: बिल्कुल। अचार है, चूरन है, चिप्स पापड़ कचरी ये सब भी बहुत मिलता है। और जो बहुत सारी चीजें बर्तने

0: वगैरह जैसे आ गए हैं मार्केट में, तो वो सब भी मिलते हैं, और तरह तरह की जैसे आपने चूड़ियां करी,
1: लेकिन
0: झुमके
1: लोगों के
0: वगैरह
1: पास
0: देखो
1: वक्त
0: मिलते हैं।
1: नहीं है।
0: जी
1: अब जो मेले में भीड़ होती है वो बड़ों की भीड़ होती है,
0: जी
1: ज्यादातर उम्रदराज लोगों की, बच्चों की भीड़ नहीं होती है।
0: बच्चों की भीड़ तो उन मेलों में हुआ करती थी जहाँ
1: हाँ,
0: झूले वगैरह होते
1: क्योंकि
0: थे।
1: अब जो हमारे
0: जी
1: एक श्रोता ने लिखा भी है कि मोबाइल में ही सब कुछ है, तो सब बच्चे बच्चों को अगर कहा जाए कि चलो घूम के आते हैं, दशहरे का मेला देख आते हैं, दुर्गा पूजा देख आते हैं, तो बच्चों की यही बात होती है कि इतनी देर हम पढ़ाई कर लेंगे। और पढ़ाई तो क्या, जब माता पिता घर में नहीं रहते तो पढ़ाई के साथ साथ उनका एंटरटेनमेंट स्क्रीन के सामने भी होता
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और हमारे साथी एक लिखते हैं ममता जी इसी पर कि वैसे तो मैं शुरू से शहर में ही रही हूं, तो दशहरे में जो मूर्ति बिठाई जाती थी वही मेले जैसा भी लगता था। हम लोग भी वहीं जाते थे। दशहरा के 4 दिन यानी सप्तमी से दशमी तक मम्मी घूमने जाने से 20 रुपए देती थी, उससे ही हम लोग झूला भी झूलते थे, चाट वगैरह भी खाते थे और कुछ खरीद भी लेते थे। अभी भी डिज्नीलैंड में जाती हूँ तो मुझे हर एक माल 10 रुपए या 20 रुपए वाला सामान खरीदने में ज्यादा मजा आता है। वहां मैं बड़े सामान कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। और एक लिखते हैं कि मेला हमेशा गर्मी की छुट्टियों में ही लगता है। मैं मेरे दोनों छोटे नातियों को लेकर मेले गई, बड़े बच्चे तो बड़े झूलों में बैठे थे, लेकिन छोटे झूलों में दोनों नातिनियों ने को लेकर मैं खड़ी थी, अचानक से धूल भरी आंधी चालू हुई, लगभग सभी झूले रोक दिए गए, शॉर्ट सर्किट भी होने लगा, जल्दी जल्दी सब बाहर निकलने लगे। उस समय बहुत घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि दो छोटे मेरे पास थे और बाकी सारा दूसरा ग्रुप अलग था। फिर कुछ देर सब में सब लोग मिल गए, बाहर आए तब तेज बारिश भी होने लगी थी। कई बार हो जाता है ऐसा, मौसम बदल जाता है अचानक तो पता नहीं चलता है कि हम तो मेला घूमने गए लेकिन इस तरह की समस्याएं हो जाती। तो ऐसे ही कहा जाता है कि अपने बच्चों का बहुत आप ध्यान रखें जब भी कहीं जाएं तो।
1: तो अब बातचीत को थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं विराम और सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गाना। कई बार यादों का भी मेला होता है,
0: जी
1: तो यादों का मेला बहुत विशाल होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती।
0: बिल्कुल
1: देखते हैं इस गाने

तो ममता जी, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत महिला उद्यमी ऋचा कर के बारे में, जो जीवामे कंपनी की संस्थापक है। और अक्सर क्या होता है, जब महिलाएं शॉपिंग पर जाती हैं तो अपने आंतरिक वस्त्रों के लिए एक खरीदने में उन्हें एक शर्म सी और झिझक सी महसूस होती है।

0: होता है जब महिलाएं शॉपिंग पर जाती हैं तो अपने आंतरिक वस्त्रों के लिए एक खरीदने में उन्हें एक शर्म सी और झिझक सी महसूस होती है कि
1: जी
0: कैसे उनके बारे में हम बताएं, क्योंकि ज्यादातर पुरुष ही ग्राहक को कपड़ा दिखाते हैं। तो इस समस्या पर जो ध्यान था ना, वो इन ऋचा जो कर थी उनका गया, और उन्होंने इस बारे में सोचा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने ऋचा कर जो थी वो जिवामे कंपनी की संस्थापक और पूर्व सीईओ है। जिवामे ब्रांड ऑनलाइन लग्जरी अंडरगारमेंट्स की एक कंपनी है, तो उनका इस पर ध्यान गया और उन्होंने इस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाया।
1: और ऋचा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ऋचा कर का जन्म हुआ था जुलाई 1980 को झारखंड के जमशेदपुर के एक रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय परिवार में। उनके पिता टाटा स्टील में काम करते थे और परिवार में आदर्श मूल्य संस्कार और सामाजिक रीति रिवाजों को मान्यता दी जाती थी। ऐसे परिवार में ऋचा कर ने आगे चलकर अलग ही व्यवसाय को चुना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ऋचा के सपने इन सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़े थे।
0: और उन्होंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस
1: जी
0: समय ये किसी लड़की के लिए आसान नहीं था। साल 2007 में उन्होंने मुंबई के नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में से वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया और बाद में मास्टर्स डिग्री भी पूरी की। वे शुरू से कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी, और पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋचा ने आईटी क्षेत्र में कदम रखा और रिटेल कंसल्टेंसी जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रिटेल और मार्केटिंग की गहरी समझ हासिल की, जो उनके बिजनेस में काफी काम आई। और ऋचा जब एक संस्थान में काम कर रही थी तो उन्हें एहसास हुआ कि बाजार में आज भी महिलाएं इस तरह के वस्त्रों को लेने में असहज और संकोच महसूस करती हैं। दुकानों में चयन के विकल्प कम और प्राइवेसी भी नहीं लगती, साथ ही में सही साइज नहीं मिलना एक बड़ी आम समस्या हो गई थी। बस यहीं से इस कंपनी को आगे बढ़ाने का उनका ध्यान गया।
1: और 2011 में ऋचा ने अपने पति और सह संस्थापक विवेक कर के साथ मिलकर जिवावे में की शुरुआत की। ये भारत का पहला ऑनलाइन लग्जरी ब्रांड था जिसका उद्देश्य था महिलाओं को स्टाइलिश, आरामदायक और किफायती लॉन्जरी उपलब्ध कराना, वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ।
0: जी, और शुरुआती दौर में फंडिंग जुटाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अपनी बचत और उधार लेकर इस सपने को हकीकत में बदला उन्होंने। और जो इस खरीदारी को, मतलब इस आंतरिक वस्तुओं की खरीदारी को उन्होंने इस तरह से ऑनलाइन पर ला करके बहुत ही सुविधाजनक बनाया, और बल्कि इसे एक सशक्त अनुभव में बदल दिया। ग्राहकों का भरोसा जीतने के साथ जिवामे जल्द ही भारत का विक्टोरिया सीक्रेट बन गया। साल 2014 में फॉर्च्यून इंडिया की अंडर 40 की लिस्ट में शामिल किया गया, और कंपनी की ऊंची उड़ान को देखते हुए साल 2015 में उद्योगपतियों ने भी इसमें निवेश किया, जिससे कंपनी की कीमत कई मिलियन डॉलर हो गई।
1: और जब किसी और कंपनी ने टेक ओवर किया तो ऋचा ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी भी शामिल है। आज जिवामे की वैल्यूएशन 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है और ये ब्रांड लाखों भारतीय महिलाओं के लिए आत्मविश्वास और सहजता का प्रतीक बन गया है। ऋचा कर की जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने वही सच होते हैं जिनका पीछा करने की हिम्मत हो। चाहे आप किसी छोटे शहर से हो, रूढ़िवादी परिवार से क्यों ना हो, या समाज आपको पीछे खींचे, अगर आपके पास जुनून है, मेहनत है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
0: जी
1: अब इसके बाद एक गाना सुनते हैं।

0: कैसे भीगे भीगे प्यारे प्यारे हैं नज़ारे। बारिश के
1: जी
0: मौसम में नज़ारे का आनंद कुछ अलग ही होता है,
1: बिल्कुल
0: और इस बारिश के मौसम में नींद भी खूब जम के आती है,
1: बिल्कुल
0: और तेज
1: ऐसा
0: बारिश हो रही हो तो ऐसे
1: जी
0: लगता है कि जम के सो जाया जाए, है
1: बिल्कुल घोड़े
0: ना।
1: बेच कर सो जाए
0: और आज
1: जी
0: हमने विषय भी दिया है अपने श्रोताओं को कि
1: जी
0: मुहावरों की जो दुनिया पहले होती थी बड़ी आबाद रहती थी, मुहावरों में बात करने का एक अलग ही जायका होता है,
1: बिल्कुल
0: मिजाज होता है, लेकिन अब ये तरीका बिल्कुल विलुप्त हो रहा है। लोग अगर मुहावरा बोलना भी चाहें तो सामने वाला समझता ही नहीं। आप आने वाली पीढ़ी के सामने मुहावरे का प्रयोग करके देखिए,
1: वो सिर्फ
0: वो
1: कोर्स में ही पढ़ के समझते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: वो
1: हम लोग
0: पूछते
1: तो
0: हैं।
1: अपने घर में दादी नानी जो
0: हाँ
1: थी, मम्मी वगैरह, ये सब हर बात में कहावते मुहावरे बोलती थी। कुछ नहीं काम आ रहा है तो कह रही कि नाचना आवे आंगन टेढ़ा
0: बिल्कुल। अब
1: जी
0: देखिए ना, हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि घोड़े बेचकर सोने वाले मुहावरे से मुझे एक घटना याद आ गई। मेरी भतीजी की शादी थी, बुआ होने के नाते मेरे ऊपर भी काफी जिम्मेदारियां थी। 2-3 दिन के भागदौड़ के बाद जब बारात की विदाई हो गई तो जहां जगह मिला वहां सो गई। इत्तेफाक से उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था, उसे जन्मदिन सेलिब्रेट करना था, पर मैं तो घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने मुझे इस तरह से कभी सोते नहीं देखा था तो घबरा कर रोने लगा। तब उसके पापा ने उसे समझाया और मुझे जगाया। फिर किसी तरह से केक कटवा कर हम सबको बाय बोलकर फिर से घोड़े बेचकर मैं तो सो गई।
1: क्या बात है, कितनी अच्छी सी यादें हैं
0: वैसे ये
1: जी
0: घोड़े बेचकर नींद आजकल आ जाए तो ये अच्छी बात है, इससे बड़ा
1: जी
0: खुश नसीब कोई है नहीं
1: बिल्कुल, जिसको
0: कि
1: गहरी नींद आती हो
0: गहरी
1: जल्दी,
0: नींद और देर तक आती हो।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: सही
0: अब
1: बात।
0: जो जमाना है, जो सोशल मीडिया, मोबाइल स्क्रीन और व्यस्तता और सबकी दोहरी तेहरी जिम्मेदारियों ने नींद हनन कर ली है,
1: बिल्कुल,
0: और
1: क्योंकि
0: जहां
1: बगल में मोबाइल रखा रहता है, जरा सी मैसेज आई नहीं कि पट से देखने लग गए, तो ये चीज बहुत गड़बड़ हो गई नींद हमारी। तो हमारे साथी लिखते हैं, घोड़े बेचकर सोना हिंदी का बेहद प्रसिद्ध और लोकप्रिय मुहावरा है, जिसे रोज मजाक की बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगर बहुत उठाने पर भी नींद से कोई नहीं उठता है तो कहा जाता है कि घोड़े बेचकर सो रहे थे। लोग बोलते हैं कि बेटी का ब्याह कर लिया, अब तो हमको घोड़े बेचकर सोना है। इसका मतलब निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना या सारी चिंताओं को छोड़कर बेफिक्र हो जाना। मुहावरे का अर्थ और प्रयोग ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी तरह के तनाव या डर के बिना आराम से सोता है, बहुत लापरवाही होने पर भी इसका प्रयोग होता है। इस अर्थ में भी होता है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर होकर सो रहा है। कई बार कहते हैं कि भाई तुम इतना सो रहे हो घोड़े बेचकर, क्या तुमने पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर ली है क्या, इस तरह से भी कहा जाता है। और ममता जी हमारे और साथी लिखते हैं कि घोड़े बेचकर मुहावरे का अर्थ निश्चिंत और बेफिक्री गहरी नींद लेना होता है। पुराने समय में घोड़े के व्यापारी को घोड़े की देखभाल के लिए रात भर जागना पड़ता था। जब घोड़ा बेचा जाता था तब निश्चिंत होकर चैन की नींद ले सकते थे। तो इस तरह की बातें हमारे साथियों ने लिखी हैं। और एक लिखते हैं, मुहावरे की दुनिया, घोड़े बेचकर सोना अभी सखी सहेली शुरू होने से पहले

0: वो घोड़े बेचकर ही सो रही थी, और इस मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना। और ये मुहावरा हम सबके जीवन में लगभग, मैं कहूंगी कि रोज ही प्रयोग होता है। और कवि का और कहती है कि हम घोड़े बेचकर रविवार के दिन सो जाते हैं, उस घोड़े के उसके कारण से हमारे रोजमर्रा के काम में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। ऐसा अनुभव मेरा तो कितनी बार रहा है, कितनी बार घोड़े बेचकर ऐसे सो गए कि मुझे सुबह उठकर काफी भागीदारी मतलब दौड़ भाग लगानी पड़ी काम करने के लिए। और ये कहती कि भाई भागा दौड़ी में दिन भी बीत जाता है इस तरह से।
1: दरअसल घोड़े बेचकर सोने का जो मुहावरा प्रचलित हुआ कि पहले के जमाने में घोड़ा घर पे होता था, मतलब आंगन द्वार पर घोड़ा बंधा होता था और उसके पीछे बहुत सारी लागत लगती थी, क्योंकि जिसके द्वार पर घोड़ा होता था वो कहा जाता था बहुत समृद्ध इंसान है, और उसके पीछे जो खान पान होता था वो बहुत कुछ लगता था, लागत लगती थी, तो बेचने पर पैसे बहुत मिलते थे, वो इंसान समृद्ध हो जाता था। तो एक
0: जी
1: बार जब पैसे से समृद्ध हो इंसान को नींद अच्छी आए, तो
0: जी
1: ये मुहावरा उस समय बना था। और इस मुहावरे का प्रयोग कई बार नकारात्मक भी हो जाता है,
0: बिल्कुल
1: इम्तिहान के दिन जब होते हैं, परीक्षा की घड़ी होती है, तो पढ़ते पढ़ते कई बार रात हो जाती है, सुबह के 4 बज जाते हैं और पता चला कि बस एक झपकी ले लेते हैं और उठ के तैयार होके परीक्षा देने जाना है, तो पता चला कि आप सोते ही रह गए। वहां घोड़ा बेचकर सोने वाली बात तो है नहीं,
0: जी
1: लेकिन नींद ऐसी आई कि आपकी परीक्षा को देर हो गई।
0: देर हो
1: कई
0: गई।
1: कई घटनाएं ऐसी भी घटित हुई कि लोग परीक्षा के पहले सोते ही रह गए और या नींद तब खुली जब परीक्षा का टाइम हो गया, तो भागते भागते आप परीक्षा हॉल तक पहुंच रहे हैं,
0: कई बार ऐसी
1: तो
0: चीजें
1: ये
0: हो भी
1: नींद भी,
0: जाती है।
1: ऐसी
0: हाँ
1: नींद भी होती है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि कुछ लोग तो सचमुच नींद में ऐसे सोते हैं कि लगता है अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। एक परिवार के साथ सुबह के टाइम में हम लोग चले गए और मंदिर घर मंदिर मतलब मंदिर चले गए, और घर में बहू और उसकी बच्ची थी। मंदिर से लौटते हमें 10 बज गए। जब दरवाजा खुलवाया गया तो बहू को सुना ही नहीं दे रहा था। आधा मोहल्ले के लोग जुट गए और बहू दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। बड़ा डर लग रहा था। अंत में दूसरे के घर में जाकर बांस की सीढ़ी लगाकर खिड़की पर डंडे से पीटा गया तो बहू की बच्चे की रोने की आवाज आई तो बहू बोली कि सो गए थे, सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद से उन लोगों ने उनके परिवार ने बहू को पर कभी मतलब बहू को घर पर कभी नहीं छोड़ा कि ये जब जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो फिर से सो जाए।
1: और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि भाई सो गए फिर क्या, देह पर मक्खी बैठी, मच्छरों ने अटैक किया, क्या अंतर पड़ता है, अब सोए तो सोए लेकिन ध्यान रहे कि ये सोए ही नहीं अपितु घोड़े भी बेचकर सोए हुए हैं, यानी पूरी तरह से गंभीर निद्रा में सो रहे हैं, जबकि निद्रा के संबंध में कहा गया है कि ये निद्रा श्वान की भांति होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए, और हम लोग इस जग पाठशाला के एक विद्यार्थी ही तो हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुहावरा है और इसके निहितार्थ यही है कि निद्रा तो एक बहाना है, सच तो समस्याओं से बचते रहने का एक उपाय मात्र ही है। दरअसल कई बार इसमें लापरवाही भी छिपी होती है, और अब आगे की जो जनरेशन है कई बार इसी तरह की नींद सोती है कि आप
0: बिल्कुल।
1: जगाते रहो उठना ही
0: क्योंकि
1: नहीं।
0: उनकी भी देखिए वो लोग देर रात तक सोशल मीडिया मोबाइल में लगे रहते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करते रहेंगे, नहीं तो कुछ सर्च ही कर रहे हैं, नहीं तो लेट नाइट पढ़ ही रहे हैं। तो उससे क्या होता है फिर वो सुबह मतलब पता चला वो 3 बजे सोए
1: अब
0: हैं।
1: उल्टा हो रहा है मामला, क्योंकि
0: जी
1: अब लोगों को घोड़े बेचकर सोने की आदत नहीं बल्कि नींद से जूझने की आदत पड़ गई
0: जी
1: है, और ये नींद से जूझने वाली जो बात है गाने में भी प्रयुक्त हुई है।
0: तो चलिए
1: देखते हैं इस
0: सुनते
1: गाने में क्या है। फिल्म है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।

0: अब मंजरी जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतिया या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: अभिनय के साथ ही और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से

0: सेलुलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी।
1: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूं, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई, है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
0: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: अनवर
0: जी।

0: साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो है।
1: जी। और उन्होंने एनएसजी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
0: ओके
1: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया। और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते
0: वाह
1: थे
0: वाह
1: गाना, क्योंकि
0: वाह।
1: हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी
0: अरे अरे।
1: और हम गांव में मतलब रह रहे थे। इतना मजा आया था ना राजस्थान के एक गांव में। और शाम में मतलब 6 साढ़े 6 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर,
0: आहा
1: और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6 साढ़े 6 7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, हमको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में, बस यूं ही करके। और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी, और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म
0: ऑडिशन से मिली थी।
1: ऑडिशन से। बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
0: ओहो
1: हाँ, और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए।
0: जिनके नाम हम नहीं लेना
1: नहीं,
0: चाहेंगे।
1: लेंगे। मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिप सिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वॉन्टेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वॉन्टेड अ सिंगर। तो मैंने वही पे स्कोर किया
0: क्या बात है।
1: कि और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था। एंड वो जो गाना है, बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
0: यू हैव टू सिंग।
1: আমি লাস্যময়ী তোমার চোখে, কামনার ফুল যে ফোটাই তবু আখি

0: তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल,
0: हाँ
1: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर। तो इस फिल्म ने बहुत नाम दिया,
0: हाँ
1: और एक्सपीरियंसेस किस तरह से रहे एक इंटरनेशनल
0: ये
1: टीम के साथ काम
0: बिल्कुल
1: करने के?
0: इंटरनेशनल टीम के साथ, क्योंकि योगन योगस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे वो विम वेंडर्स की फिल्म
1: हो,
0: उन्होंने
1: टुवर्ड्स
0: शूट
1: द
0: किया
1: एंड ऑफ
0: था।
1: द वर्ल्ड।
0: यस, सो एक-एक नाम ऐसे आ रहे थे तो हमें लग रहा था माय गॉड, हम लोग ऐसे लोगों के साथ, और पहला ब्रेक होता है। उसके बाद जब फिल्म बन गई और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग ट्रैवल हुए, वो पहला एक्सपीरियंस था। टोरंटो से शुरू हुआ, फिर हम बर्लिन आ ले गए, और बर्लिन में हम बड़े स्टार्स से मिले, मतलब कियानो रीव्स तो वो मतलब बहुत ही कमाल का
1: चार पांच
0: एक्सपीरियंस था।
1: धड़कन मिस।
0: हाँ बिल्कुल टोटल। और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। अच्छा, वो पहली पिक्चर थी जहां हम लोगों को इतना मतलब वो मिला था। पैसे भी अच्छे मिले थे, लेकिन तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, तो बर्लिन आले जब होती है ना, बहुत ठंड होती है वहां, -10। मेरे पास एक ही कोट था, कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं थे, एक साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी,
1: वाह,
0: लेकिन -10 में रेड कार्पेट और कोट भी, मतलब वहां जाके मुझे फ्लोरियन ने और एक कोट मतलब दिया, एक विंटर कोट, की दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि मेरे पास दिल्ली की ठंड वाली कोट थी।
1: बिल्कुल।
0: इंडिया में वैसे कोट्स मिलते ही नहीं थे, वो तो बाद में ब्रिक लेन करने के बाद जब मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी, देन आई अंडरस्टूड व्हाट विंटर कोट्स आर।
1: क्या
0: तो
1: एक्सपीरियंस था वो एकदम,
0: हाँ,
1: है ना?
0: मतलब बूट्स भी नहीं थे,

0: चप्पल और सॉक्स पहन के गए थे बर्लिन आले अटेंड करने, और मिल रहे हैं किसे, कियानो रीव्स।
1: वाह
0: पर
1: वाह वाह वाह,
0: ये
1: यही तो
0: कहानियां
1: मजा है।
0: बहुत ही कमाल। और मेरे को एक्टर प्रशांत नारायणन वो भी आए थे, और हम लोगों को रिट्स कार्ल्टन में ठहराया गया था, तो हम तो
1: वाह
0: पागल हो
1: वाह,
0: गए थे। मतलब लाइक द होटल इज सो ऑप्यूलेंट,
1: ग्रैंड।
0: या बट थैंकफुली लेटर इन लाइफ दिस बिकेम अ नॉर्म इन लाइफ। लाइक मेनी मोर फिल्म हैपेंड लाइक दिस, जहां मतलब बहुत ट्रेवल मैंने किया, जूरी में भी रही, और ये धीरे धीरे ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गई।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये जो
0: दिस इज
1: है,
0: द बिगिनिंग।
1: यस बिल्कुल, लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल फिल्म्स और उनमें अवार्ड्स लेने और तारीफ पाने का सिलसिला लगातार चलता रहा,
0: जी,
1: तो इसके बाद कौन सी फिल्म आई?
0: इसके बाद मैंने यहाँ 12 आना किया, मतलब इंडिया में एक फिल्म की,
1: मेनन के साथ।
0: महाराजा मेनन के साथ ही किया
1: जी।
0: एक, और फिर ब्रिकलेन हैपेंड। फिर कुछ दिन, कुछ साल मुझे बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी, फिर भी देख इंडियन सर्कस करके एक फिल्म की मैंने उस समय, और उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन फिर भी
1: मजा
0: ऐसा
1: नहीं आ
0: नहीं है
1: रहा था
0: कि मतलब बहुत काम मिल रहा था, ऐसा
1: उस
0: नहीं
1: दौरान।
0: हुआ।
1: एक बांग्ला फिल्म भी की,
0: बीबॉर, हाँ
1: बीबॉर।
0: बांग्ला बीबॉर भी की। फिर मुझे ब्रिकलेन मिला, और एक फ्रेंच फिल्म भी की थी मैंने, लेट द विंड ब्लो, हवा आने दे करके। फिर ब्रिकलेन के बाद मैं लंदन शिफ्ट हो गई कुछ साल के लिए।
1: ये डिसीजन किस चीज पर बेस्ड था?
0: ये एक्चुअली वहां से कुछ अच्छे काम मिल रहे थे इसलिए था, और मैंने शादी भी कर ली। ये भी था,
1: ये भी
0: हाँ
1: था।
0: प्यार हो गया।
1: वाह
0: ये भी था,
1: वाह।
0: दोनों चीजें थी। और मैंने वहां पे म्यूजिकल थिएटर भी किया, बहुत बड़ा वेस्ट एंड पे, यू नो, रॉयल ओपरा हाउस में। जॉसलिन पुक, जिन्होंने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में म्यूजिक दिया, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस म्यूजिकल के, तो बहुत मजा आया काम करके। और फिर
1: कितना फर्क है इंडियन थिएटर की दुनिया और ब्रॉडवे की दुनिया में?
0: द थिंग इज, इंडिया में हमें थिएटर, मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर जैसे प्रोफेशनल थिएटर है, लाइक
1: बिल्कुल।
0: प्रोफेशनली चलती है वो, लेकिन हिंदी थिएटर में प्रोफेशनल थिएटर एक रेपुटरी कंपनी या ऐसे छोड़ के नहीं है। तो प्रोफेशनलिज्म जो है, क्योंकि जहां आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे अपनी जिंदगी बिताने के लिए, कि आप सिर्फ थिएटर कर रहे हो, वो नहीं होता यहाँ। तो अगर वो नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी जो है वो सफर करेगी। क्योंकि अभी मैं एक प्ले कर रही हूं जो मैंने और शारिब हाशमी हम दोनों ने मिलकर लिखा, पर क्या होता है कि हमें जब फ्री वक्त मिलता है तभी हम वो कर पाते हैं, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिलते हैं इससे, ये हॉबी हो जाती है। जबकि हम अपने पूरे, मतलब अब हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर भी उसको एक लेवल के प्रोफेशनलिज्म तक ला पाते हैं, बट नो वन इज फंडिंग अस।
1: तो इसके सहारे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती।
0: तो उसमें फर्क हो जाता है। अभी जब मैं वहां पे प्ले कर रही थी तो हम जो 8 वीक्स का रिहर्सल कर रहे थे, हमें बाकायदा फुल पेमेंट मिलता था उसका, वीकली मनी, विच यूज टू बी वेरी गुड। उसके बाद शोज जब कर रहे हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उस समय। तो अगर ऐसा हो तो मैं तो जिंदगी भर थिएटर ही करूं,
1: बिल्कुल।
0: बिकॉज आपको लाइव परफॉर्मेंस में जो मजा आता है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो रिएक्शन मिलता है, वो फिल्म में नहीं मिलता है।
1: ऑफ कोर्स।
0: बट द थिंग इज, वी ऑलवेज हैव टू बैलेंस इट, बिकॉज वो है ही नहीं।
1: तो लंदन में थिएटर होता रहा,
0: हाँ
1: अलग-अलग प्रोडक्शंस में काम
0: यस
1: किया।
0: किया, और यहाँ पे भी मैंने पोस्टकार्ड्स फ्रॉम गॉड करके एक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किया, दक्षा शेट और उनके डांस कंपनी के साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्तियाज धारकर्स पोएम्स, और म्यूजिकल ही था वो,
1: वाह
0: मतलब
1: वाह, क्या बात है।
0: इट वाज फैंटास्टिक। तो ऐसी ऐसी चीजें करती गई मैं, बट ब्रिकलेन चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स।
1: एवरीथिंग, यस। मुझे ये बताइए कि लंदन में रहते हुए और कौन कौन सी फिल्में भी हुई?
0: फिल्में भी हुई, मैंने देव बेनेगल के साथ रोड मूवी की, मतलब यहाँ आना जाना, फिर और एक फिल्म की थी मॉनसून शूट आउट करके, जिसमें नवाज और मैं हैं, गुनीत ने प्रोड्यूस किया था उसको, बॉम्बे समर करके एक अमेरिकन डायरेक्टर के साथ एक फिल्म की। सो ऐसी चीजें मैं करती गई।
1: और लंदन का ये जो प्रवास है, ये कब और कैसे खत्म हुआ?
0: धीरे धीरे क्या हुआ कि इकोनॉमिक

0: वहां पे स्टैग्नेशन आ रही थी ना, 2009-10, ये दैट वाज लाइक यू नो जो उनका स्टॉक मार्केट पूरा गिर गया, लीमन ब्रदर्स वगैरह सब क्रैश हो गए. सो वर्क वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट देयर. आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क हियर ओनली.
1: अच्छा
0: तो मतलब जैसे देव बेनेगल की फिल्म है, मैं रह वहां रही थी पर यहाँ काम कर रही थी काफी सारा. सारी फिल्में इंटरनेशनल टाइप की थी बट आई वॉज डूइंग वर्क हियर. तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा वक्त ज्यादा बिताया जाए,
1: तो आप वहां से वापस आ गई
0: वापस आ गई. और
1: और
0: एक चीज थी, मैंने पहले ही कहा था मुझे ठंड पसंद नहीं. सो द वेदर वॉज गेटिंग ऑन टू माई नर्व्स, वेदर आई लाइक इट और नॉट.
1: ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है मुंबई आपका घर हो गया।
0: जी,
1: अब भोपाल वाली फिल्म तभी हुई?
0: भोपाल वाली फिल्म भी लंदन में रहते हुए ही हुई क्योंकि
1: अच्छा
0: वो भी वहीं का प्रोडक्शन था. या रवि कुमार जो डायरेक्टर थे,
1: जी
0: ही इज ब्रिटिश.
1: ओके।
0: या
1: उस फिल्म में अभय आपके साथ थे?
0: नहीं, भोपाल प्रेयर फॉर रेन में मैं और राजपाल यादव थे और
1: ओके अच्छा
0: मार्टिन शीन, कार्ल पेन, ये सब भी
1: हाँ
0: वो
1: वो दूसरी,
0: इंटरनेशनल फिल्म
1: करेक्ट
0: थी. या
1: करेक्ट
0: या
1: जी जी जी
0: या
1: बिल्कुल। उसका एक्सपीरियंस कैसा था?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. रवि मतलब डॉक्टर थे एक्चुअली और उनकी ये पहली फिल्म थी.
1: अच्छा,
0: और
1: और एक ट्रेजेडी होने वाली है उसके इर्द गिर्द
0: हाँ
1: बुनी
0: उसकी,
1: गई फिल्म।
0: हाँ फिर मैंने अन्ना कारेनिना भी किया उस समय व्हेन आई वाज इन लंदन, जो राइट के साथ, मतलब तो काफी सारा वहां इधर दोनों का काम कर रही थी.
1: बिल्कुल मजेदार है ये। मुझे लगता है कि यहां भी एक गाना सुनते हैं, फिर आगे
0: बिल्कुल
1: की बात करते हैं।
0: बिल्कुल.
1: तो अब बताइए कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है?
0: मुझे नूर जहान के गाने जो हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा.
1: क्या बात है, उन्हीं ने गाया है, आवाज दे कहां है,
0: बिल्कुल,
1: वो भी सुना जा सकता
0: वो
1: है।
0: भी, हाँ, वो भी सुना जा सकता है.

0: इन तमाम फिल्मों की बात हो रही है, इस बीच में मैं ये देख पा रहा हूं कि आपने आई लव न्यू ईयर जैसी फिल्म भी की,
1: जी
0: मीना की, सिद्धार्थ की, ये सारे इंटरनेशनल फिल्म हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी कहा जा सकता है। क्या बम्बैया चमक दमक वाले सिनेमा ने आपको आकर्षित नहीं किया?
1: आई लव एन वाई, सनी देओल और कंगना रनावत है उसमें,
0: वो एक फिल्म थी, यस
1: वो
0: यस।
1: मेन स्ट्रीम फिल्म ही थी. और सो आई प्ले हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड आई डंप हिम, सो
0: अरे
1: आई हैड द
0: वाह,
1: प्लेजर ऑफ डंपिंग सनी देओल ऑन
0: डंपिंग द मेन हीरो, क्या बात है, मजे
1: स्क्रीन.
0: की बात है।
1: हाँ नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली. मैं तो सिद्धार्थ बहुत ही, मतलब रिची मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम डायरेक्ट की, उनकी फिल्म थी. और बहुत ही अच्छी फिल्म मेकर हैं वो, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके. ये सब फिल्में की मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा ही काम आता रहा मेरे पास. और मुझे लगता है कि ये ऐसा, आप हमेशा टाइप कास्ट हो जाते हो ना, कि आपको स्लॉट में ढाला जाता है कि आपने ऐसा काम किया है तो आप ऐसे ही हो. स्पेशली आप अगर ड्रामा स्कूल से हो तो लोग ये समझते हैं आप अगर अच्छे एक्टर हो तो आप मेन स्ट्रीम काम नहीं कर सकते. ऐसा नहीं होता है.
0: एक सील ठप्पा, एक टाइप
1: हाँ
0: कास्ट वाला मामला
1: हाँ बट
0: होता
1: ऐसा नहीं होता है. हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स पार्च्ड की मैंने,
0: है। हाँ,
1: पार्च्ड
0: मैं
1: जो,
0: बस उसी की तरफ आ
1: या
0: रहा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म आपके करियर की है
1: हाँ
0: पार्ज, जो
1: पार्च्ड,
0: महिलाओं की जिंदगी पर एक तरह से कहा जाना
1: यस.
0: चाहिए।
1: और पार्च्ड वॉज एक्चुअली अ स्टोरी दैट आई हैड रिटन
0: अरे
1: इनिशियली,
0: वाह,
1: यस.
0: ये तो कमाल की बात है, ये मुझे नहीं पता था,
1: हाँ
0: वाह।
1: मैंने ये लिखा था. और मैंने एक दिन, हम लोग मिले थे लीना और असीम, और हम सोच रहे थे कुछ करे कुछ करे, तो मैंने लीना को ये कहानी सुनाई और उसको बहुत अच्छी लगी. उसने कहा कि यार इसको बनाते हैं. मैंने कहा बनाओ, मैं दे देती हूँ तुमको. सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड. देन आई टुक हर टू दैट प्लेस जहां से मुझे सोर्स मिला था उस कहानी का, एंड देन शी डिड हर रिसर्च एंड शी रोट द स्क्रीन प्ले, और ऐसे करके बनी वो.
0: वो एक शानदार फिल्म बनी।
1: हाँ वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि द जर्म ऑफ द आइडिया केम फ्रॉम मी. और
0: इसकी शूट से जुड़ी हुई कुछ बातें।
1: हाँ, तो उसके बाद राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, इन सब की कास्टिंग हुई एंड वी हैड लाइक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, शूटिंग दिस टुगेदर, बॉन्डिंग. एंड हमने साथ में बनाई इस फिल्म को, वी ऑल गॉट टुगेदर एंड मेड द फिल्म. रसल कार्पेंटर जिन्होंने टाइटैनिक शूट किया है, ही इज द सिनेमाटोग्राफर ऑफ एवटार्स एंड टाइटैनिक, ऐसे बड़े बड़े फिल्मों, ही शॉट द फिल्म. और ये असीम बजाज की वजह से है,
0: वाह
1: हु इज आर
0: वाह,
1: प्रोड्यूसर, और लीना के पार्टनर भी हैं वो. सो असीम इज रियली इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर. वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आए,
0: वाह,
1: एक छोटी फिल्म जो है उसका विजन बड़ा हो गया
0: बड़ा
1: पूरा.
0: हो गया, और फिल्म
1: हाँ
0: बात भी बड़ी करती
1: बड़ी,
0: है,
1: हाँ
0: और इसलिए वो बहुत दूर तक पहुंची एक
1: यस.
0: तरह
1: एंड
0: से।
1: लीना टुक दैट लिटिल स्टोरी दैट आई हैड, वो उसको वहां तक लेके चली गई,
0: वाह,
1: सो इट वॉज रियली फैंटास्टिक. एंड ऑल्सो वर्किंग विथ सच अमेजिंग एक्टर्स, सब लोग बिंदास खुल के हम लोगों ने काम किया.
0: बिल्कुल
1: ये
0: सही है। जोरम के बारे में बात कीजिए,
1: जी
0: क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म
1: फिल्म
0: है।
1: है. हाँ तो अगेन देवाशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मुझे उसका काम, सिर्फ काम ही पसंद नहीं है, मुझे वो इंसान बहुत पसंद है.
0: वाह,
1: ही इज अ अनअपोलोजेटिक अनकॉम्प्रोमाइजिंग आर्टिस्ट
0: बिल्कुल अपनी
1: जो
0: तरह की फिल्में करनी है।
1: आज की तारीख में आपको बहुत कम मिलती है. और मैं इसलिए देवाशीष को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ. तो जब जोरम वो कास्ट कर रहा था तो मैं एक्चुअली आबूधाबी में थी. आई वॉज शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड येलो बस, और वो भी एक इंटरनेशनल फिल्म है, अमेरिकन डायरेक्टर की फिल्म है. तो देवाशीष ने कहा मुझे कि मेल ड्रिवन फिल्म है, बट आई वॉन्ट यू बिकॉज दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट.

0: मी एंड आई वॉन्ट समबडी हु विल जस्ट बी एफर्टलेस. मैंने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं कर रही हूं,
1: वाह
0: दैट्स ऑल.
1: क्या बात है। और जोरम ने काफी नाम कमाया, काफी चर्चा बटोरी,
0: बिल्कुल
1: देवाशीष की तमाम फिल्मों की
0: बिल्कुल
1: तरह।
0: बिल्कुल कमाल. और मुझे मनोज के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा. जीशान मेरा जूनियर है और बहुत अच्छा एक्टर है, तो इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आया. एंड मनोज भी बहुत अच्छे इंसान है, यू
1: बिल्कुल।
0: नो, इज सच अ ब्यूटिफुल पर्सन. एक्टर तो सबको पता ही है वो है.
1: बिल्कुल। तो ये आपकी जो फिल्मोग्राफी है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है। मुझे गौरी हरी दास्तान का नाम भी आपकी फिल्मोग्राफी में दिखता है, और
0: बिल्कुल
1: मुझे लगता है कि इस फिल्म की भी बात होनी चाहिए,
0: या
1: क्योंकि अनंत तो बहुत अलग तरह से फिल्में बनाते हैं।
0: अनंत जी के साथ मैंने 4 फिल्में की है.
1: हाँ बिल्कुल, पीछे भी वो
0: मैंने गौर हरी दास्तान से शुरू की, वो जर्नी जो है गौर हरी दास्तान से शुरू हुई. फिर रफ बुक करके मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ, और वो काफी साल तक थी, अभी शायद वो हटाई गई है
1: अच्छा
0: पे थी वो, और उसको थिएट्रिकल रिलीज भी विवेक वासवानी ने प्रोड्यूस किया था. वो एजुकेशन सिस्टम पे था, वहां पे मैंने एक फिजिक्स टीचर का किरदार निभाया था. और एक्चुअली रफ बुक में मैंने अपने आप को कास्ट कर लिया था, क्योंकि
1: अच्छा ऐसा।
0: अनंत जी के ऑफिस में मैं उनसे मिलने गई थी. उन्होंने कहा मैं रफ बुक करके एक फिल्म लिख रहा हूँ, तो यू नो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फिजिक्स टीचर एंड ही डज दिस एंड ही, एंड व्हाई कांट इट बी अ शी, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली ऑफरिंग मी अ रोल इन द फिल्म बट नॉट द सेंट्रल कैरेक्टर.
1: राइट।
0: सो ही सेड ओके. और मैं डैलस जा रही थी नेक्स्ट डे किसी और फिल्म के लिए. व्हेन आई केम बैक ही सेड कि ओके दीज आर योर डेट्स एंड यू कम, एंड या नाउ इट्स नॉट ही इट्स शी. आई वॉज लाइक ओके
1: वाह वाह, क्या
0: वंडरफुल.
1: बात है।
0: हाँ, देन उसके बाद मैंने डॉक्टर रखमा बाई
1: वो भी उनके साथ ही है,
0: उनके
1: बिल्कुल,
0: साथ
1: जिसका
0: की,
1: जिक्र हमने अभी पीछे किया,
0: बिल्कुल
1: देश की पहली डॉक्टर, महिला
0: देश की
1: डॉक्टर।
0: प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर.
1: जी
0: हाँ, वो की मैंने, और उसमें तो बहुत ही मतलब इट वॉज अ हार्ट, क्योंकि ये जर्नी थी उसकी. और आई हैड टू लर्न ऑल्सो मराठी फॉर दैट. पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला, तो वहां लोगों को लगा कि मैं तो पुणे चा मुलगी
1: क्या
0: हूँ.
1: बात है।
0: और मुझसे ऑडियंस ने आके मराठी में बातचीत करना शुरू किया, एंड आई वॉज लाइक कंफ्यूज, कि मैंने कहा मैंने उतना ही सीखा
1: जो वहां दिख रहा
0: वहां दिख रहा है. एंड इट वॉज ओल्ड मराठी ऑल्सो,
1: है।
0: इट्स
1: यस।
0: नॉट द बोलचाल मराठी दैट इज बींग स्पोकन नाउ. अपनी बेटी को मैं ये जरूर कहती हूँ कि प्लीज आप मराठी सीखो, यू नो, बिकॉज यू आर स्टडिंग मराठी इन स्कूल, तो आपको सीखना है और आप बिल्कुल सीखो, अच्छे से सीखो.
1: क्या बात है। तो 3 फिल्मों की बात हुई ना अनंत महादेवन के साथ,
0: हाँ, अभी पास्ट टेंस करके और एक फिल्म अभी मैंने उनके साथ अभी खत्म की है.
1: क्या बात है, एक ही डायरेक्टर के साथ 4 फिल्में,
0: हाँ, उनके
1: ये तो
0: साथ मुझे
1: कमाल
0: काम
1: की
0: करने
1: बात
0: में
1: है।
0: बहुत मजा आता है. वो सब्जेक्ट हमेशा बहुत ही अलग अलग चूज करके लाते हैं, मतलब दे आर सो. तो पास्ट टेंस में परेश, और स्टोरी टेलर भी की, फिफ्थ, यस,
1: लीजिए, एक फिल्म तो छूटी गई थी।
0: आई हैव डन स्टोरी टेलर ऑल्सो विद आनंद जी.
1: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एंग्री इंडियन गॉडेस भी आपके करियर की एक इम्पोर्टेंट फिल्म है, और
0: बिल्कुल
1: बहुत फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने अपना झंडा लहराया है।
0: जी. एंग्री इंडियन गॉडेसेस एक्चुअली पूरा इम्प्रोवाइज्ड फिल्म है, और वो बहुत ही कमाल का प्रोसेस था उसमें, क्योंकि वहां पैन नलिन जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था, ऑल दी एक्सेप्ट फॉर माई कैरेक्टर, एवरीबडी ऑल्सो डिवेलप देयर ओन कैरेक्टर्स. मैं एक्चुअली और एक फिल्म शूट कर रही थी उस समय विकास मिश्रा की, इसलिए मेरे पास डेट्स नहीं था, दैट्स व्हाई आई हैड टू आई ज्वाइन दैट प्रोसेस लेटर. तो इसलिए मुझे नलिन ने कहा कि आई हैव टू गिव यू अ कैरेक्टर वेर यू हैव टू फिट इन एंड रिजॉल्व द थिंग्स नाउ, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, देव गॉन थ्रू द 20 डेज वर्कशॉप विच आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ, आई कुडंट बी. जबकि मैं, मतलब इट वॉज अ थिंग दैट आई ऑलवेज फील अ लिटिल कि यू नो आई वॉज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, और वो एंड
1: लेकिन
0: वक्त
1: फिर
0: पे
1: बीच
0: यहाँ
1: में
0: डेट
1: चीजें
0: आए से हो गया.
1: दूसरी।
0: एनीवे, सो इट वॉज लाइक कंप्लीटली डिवाइज्ड, एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, क्योंकि उस समय निर्भया का केस हुआ था 1 साल पहले, और सब लोग हिले हुए थे कि जिस ढंग का वायलेंस देखा गया, जिस ढंग की मतलब कॉन्वर्सेशंस पब्लिक में आई, यू नो, एवरीथिंग.

0: was. So the film came out of that. So it's a personal film for all of us, angry Indian goddesses.
1: वाह, बिल्कुल. और उस फिल्म को अपना प्रॉपर ड्यू मिला, उसका काफी नाम हुआ उस फिल्म का. यहां भी एक गाना सुनते हैं,
0: बिल्कुल.
1: कौन सा गाना होगा?
0: इस समय मुझे लगता है स्वानंद किरकिरे, मेरा दोस्त भी है और मेरे प्ले में उसने गाना लिखा भी है, पर
1: वाह,
0: उसका जो मतलब मेरा फेवरेट गाना बावरा मन हो
1: हमने
0: सकता
1: अब
0: है.
1: तक स्वानंद की आवाज में सुना है, अब
0: हाँ
1: हम तनिष्ठा की आवाज में सुनना चाहते
0: स्वानंद माफ कर दे. पर ये एनएसजी में जब हम थे ना, वो तब से गाता था
1: तब से
0: ये.
1: गाते. बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल.
0: बा

0: उस मोड़ पर ले जाना होगा जहां आपकी जिंदगी अचानक एक दिन पूरी तरह से बदल गई। वो क्या था और वो कैसे सामने आया?
1: मैं फुल प्लेट शूट कर रही थी। फुल प्लेट की जर्नी बहुत मुश्किल रही क्योंकि प्री प्रोडक्शन में आई लॉस्ट माय फादर एंड आई वाज वेरी क्लोज टू हिम। और इट जस्ट मतलब उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं फिल्म क्यों बना रही हूँ, मैं कर क्यों रही हूँ ये। और मेरे असिस्टेंट्स और मेरा पूरा टीम बहुत वरिड था कि ये बना भी पाएगी कि नहीं। एक पॉइंट पे मैंने सोचा था कि नहीं अभी नहीं कर सकते, बट देन माई प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि तनिष्ठा एडवांसेस जा चुके हैं, यू नो द होल टीम वॉज वर्किंग, वो उनके सैलरीज नहीं आएंगी, इफ यू कैन आई अंडरस्टैंड बट सो आई सेड ओके ओके गिव मी सम टाइम एंड देन विल। तो उसके बाद काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई फिल्म में, मतलब वाइल वी वर शूटिंग इट, सो इट वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। और फिर फिल्म खत्म हुई, शूटिंग खत्म हुई, तो मुझे दूसरे और एक को प्रोड्यूसर को लाना पड़ा टू फिनिश द फिल्म। इट वॉज इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल। फिर जब वो हुआ और हमने एडिट खत्म की, मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही थी एंड आई हैड जस्ट रैंडमली गॉन टू माई गायनोकोलॉजिस्ट टू डू सम चेकअप्स, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा। और वहां उन्होंने मतलब स्क्रीनिंग और इन सब के बाद कहा कि मुझे स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर है।
0: लेकिन इसके कोई लक्षण पहले कहीं नजर नहीं आया, आप काम करती रही लगातार
1: तो इतना फैल गया था मेरा कैंसर मेरे बॉडी में,
0: और उसने कोई संकेत नहीं दिए।
1: मतलब संकेत अभी मुझे लगता है कि शायद दिए, लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब नहीं था, यू नो दैट इट इज, सो आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है,
0: बिल्कुल।
1: यू नो एंड इट वाज अनरियल। और इट वाज जस्ट लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक आई लॉस्ट माय फादर टू
0: द सेम थिंग।
1: या इट वाज ही हैड क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया CML, सो आई डिडंट नो हाउ वुड आई टेल माय मदर।
0: ओ गॉड।
1: तो मैं रिपोर्ट्स जो है हर दिन एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकलता था, मतलब आपके लिए वो नेगेटिव है उस समय, कि हर एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ये भी। तो मैं रिपोर्ट्स गाड़ी में रखती थी और फिर ऊपर आई हैड अ 9 year old, अभी वो 10 साल की, 9 साल की थी, डॉटर एंड एंड अ मदर हु हैड लॉस्ट हर हस्बैंड जस्ट लाइक यू नो ईयर बैक एंड आई डिडंट नो हाउ टू टेल हर। बट ऑब्वियसली आई हैड टू टेल हर एट सम पॉइंट। मेरी बहन न्यूयॉर्क में रहती है, मैं उसके साथ बात कर रही थी और मेरे कुछ एक बहुत अजीज दोस्त है दिल्ली में, वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी है, वैसे दोस्त है बट ही इज सच अ काम एंड अ ब्यूटिफुल पर्सन। तो मैंने मतलब आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड आई वॉज टॉकिंग टू दीज टू पीपल। मेरी बहन ने मुझे सबसे पहले ये कहा कि दीदी आई विल कम बट यू कांट डू दिस अलोन, आई एम टू फार अवे, यू आर इन टू मच ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सिंगल हूं, मेरी बेटी के लिए एक माँ है सिर्फ और कोई नहीं है, मेरी मम्मी के लिए भी मैं ही सपोर्ट सिस्टम हूँ नाउ दैट माई डैड इज नॉट देयर, इमोशनली प्रैक्टिकली फाइनेंशियली देर इज नो बडी एल्स, सो हाउ वुड आई डू दिस एंड दी एक्सपेंसिस ऑफ माई ट्रीटमेंट इज अबनॉक्सियसली हाई।
0: हो
1: इनिशियली इंश्योरेंस ऑल्सो रिफ्यूज माई क्लेम,
0: क्यों?
1: उनके बहुत ही गंदे फंडे होते हैं, उसके अंदर मैं जा ही नहीं रही हूं एंड आई हैड टू फाइट एंड फाइट एंड फाइट विद द इंश्योरेंस।
0: आप जीती?
1: यस बट द थिंग इज देयर वर टू मेनी बैटल्स, यू नो इसमें मैं हील कैसे हूं, बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट हीलिंग एंड आई वॉज कमिंग एंड द स्ट्रेस ऑफ द फिल्म।
0: वो तो रखा ही हुआ था।
1: तो इट वॉज जस्ट आई हैड रीच द रॉक बॉटम द डे द इंश्योरेंस क्लेम गॉट रिजेक्टेड। मेरा अगले हफ्ते कीमोथेरेपी शुरू और मेरा इंश्योरेंस का मैंने जो पेपर वर्क करके दिया था, जो मांगा था मैंने सब कुछ दिया उनको, उन्होंने फिर भी मुझे मैसेज आया कि योर इंश्योरेंस क्लेम हैज बिन रिजेक्टेड। दैट डे आई रियली हिट द रॉक बॉटम कि यार इसके आगे अब अच्छा ही होगा, इससे बुरा और क्या होगा।
0: बिल्कुल।
1: बट माई सिस्टर टोल्ड मी कि नहीं, तुमको अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा, यू हैव टू टेल योर फ्रेंड्स, नहीं तो इफ नॉट नाउ देन वेन, वो सिर्फ पार्टी करने के लिए है क्या। दैट्स वेन आई रीच्ड आउट, मेरा एक गर्ल गैंग है, मैंने

0: सबसे पहले उनको बताया,
1: वो लोग कौन
0: फिर
1: है?
0: शबाना जी हमारी गैंग की
1: इसलिए
0: लीडर
1: तो मैंने नाम पूछे हैं जी।
0: है और उसमें दिया है, दिव्या है, तन्वी है, कोंकणा है, विद्या है, शहाना है, संध्या मृदुल है, उर्मिला मतोंडकर है, दिस वाज आर गर्ल गैंग, ऋचा चड्ढा है। तो ये इन्होंने मुझे, एक्चुअली ऋचा ने मुझे डॉक्टर का मतलब रेफरेंस दिया जिनके पास मैं गई फाइनली। शबाना जी आके मेरे मम्मी से मिलके, जावेद साहब शबाना मतलब टर्न बाय टर्न घर आए थे, उनको जो मतलब हौसला दिया, दैट रियली सॉर्ट ऑफ मेड माय मदर्स लाइफ इजियर, कि उनको लगा कि नहीं अकेली नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम देम आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो मेरे घर के आसपास रहते हैं, संजय सूरी है, ऑनीर है, मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं, दीप्ति गुप्ता जो सिनेमाटोग्राफर हैं, और मतलब उसका तो मैं क्या कहूँ कि रात के 2 बजे भी उसको फोन करो तो वो आ जाती है।
1: गजब।
0: हाँ, अनुराधा शेट्टी है, सब बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो सब टर्न्स लेने लग गए मेरे हॉस्पिटल के साथ। एंड तो ये जर्नी फिर ऐसा लगा कि प्यार और मोहब्बत से ना सब कुछ जीता जा सकता है। मेरा जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हुआ, अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आई एम स्टिल ऑन अ टारगेट मेडिसिन, मुझे हर
1: जबकि
0: 21,
1: 1.5 साल बीत चुका है।
0: हाँ 21 दिन बाद मुझे अभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है मेरे टारगेट मेडिसिन के लिए। बट जो मेन मतलब कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, इन सब के बाद मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे, और मुझे यही उस समय एहसास हुआ दैट हम लोग मतलब सब चीज रोबोट्स के थ्रू रिप्लेस करने जा रहे हैं, AI, बट इट इज एक्चुअली जस्ट द टच ऑफ अ रियल ह्यूमन बीइंग विच हील्स एवरीथिंग। और मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे यही कहा था कि अगर तुम पॉजिटिव रहोगे, माइंड डाइवर्टेड रहेगा, एंड इफ यू बिलीव दैट यू विल बी ओके, देन यू विल बी ओके।
1: ये कितना मुश्किल
0: सो
1: था।
0: ये मुश्किल नहीं था बिकॉज मेरे पास ये सपोर्ट था, और मेरी बहन आई थी, मेरी बहन मेरी बेटी को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके गई कुछ महीने के लिए जब मेरा कीमो चल रहा था। एटलीस्ट वन पर्सन इज टेकन केयर ऑफ। मैंने बोला था मेरी मम्मी को भी लेके जाओ, दोनों को ले जाओ तुम, पर मम्मी ने रिफ्यूज किया कि मैं तुम को अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई थिंक दैट्स द थिंग दैट ये सपोर्ट, और फिर मैंने कीमोथेरेपी के दौरान इसी वजह से आई कुड फिनिश माई फिल्म, आई स्टार्टेड राइटिंग अ प्ले कॉल्ड ब्रेस्ट ऑफ लक
1: ये
0: अलॉन्ग।
1: प्ले का आइडिया जो शुरू होता है,
0: हाँ,
1: ये वाली कहानी बताइए,
0: ये
1: क्योंकि
0: शारे
1: इस पूरे दौर से आप
0: बिल्कुल,
1: गुजर रही
0: जिस
1: थी।
0: दिन मुझे फर्स्ट मेरा रिपोर्ट आया था, मैं शारिब से मिलने वाली थी, और मैंने सोचा मैं मिल क्यों रही हूं उससे, और मैंने सोचा था कैंसिल करूं, फिर मुझे लगा कि नहीं यार मिलती हूं क्योंकि माइंड
1: डाइवर्ट
0: डाइवर्ट
1: होगा।
0: रहेगा। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं उसको बताऊंगी कैसा रिपोर्ट में आया है, पर मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, एंड आई ब्रोक डाउन। उसने मुझे अपनी पत्नी नसरीन से बात करवाया फोन पे, बिकॉज शी हैड गॉन थ्रू माउथ
1: वेरी
0: कैंसर,
1: डिफिकल्ट
0: शी
1: टाइम।
0: वेरी
1: या
0: डिफिकल्ट, शी गेव मी अ लॉट ऑफ होप। और मैंने जैसे फोन रखा, मैंने शाहरुख को अभी लिखते हैं हम
1: वाह
0: इसी इसी के बारे में
1: वाह
0: लिखते हैं,
1: क्या बात है।
0: एंड इमेजिन दैट वॉज इवन बिफोर आई हैड स्टार्टेड द ट्रीटमेंट। तो दैट इवनिंग वॉज इनक्रेडिबल, क्योंकि हमारा और एक दोस्त इंद्रनील जो भी मेरे फिल्म में है वो भी आया हमसे मिलने, और दैट वॉज द लास्ट इवनिंग। एक तरफ से रो रहे हैं, दूसरी तरफ से मजाक कर रहे हैं कि अरे यार क्या है,
1: देख लेंगे।
0: मेरा ही बॉडी है ना, मैं ही बॉडी को कहूंगी कि अब ठीक हो जा, अपने ही सेल्स हैं विच हैव गॉन रूग, इट्स अप टू मी इफ आई कैन हील। ये मतलब इट जस्ट वेंट बैक एंड फोर्थ लाइक दैट, एंड दैट्स द डे मतलब शारिब को मैंने बताया कि यार यही इसी सब्जेक्ट पे करते हैं हम अपना प्ले। फिर मेरा कीमो शुरू हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया, और जब एक ढांचा लिख लिया था मैंने, फिर शारिब और मैं मतलब हम लोग जैम करते गए और उसको आगे बढ़ाते गए, डायलॉग्स पे काम करना शुरू किया, और लास्ट कीमो साइकिल पे मैंने शारिब को बुलाया अपने कीमो हॉस्पिटल में, और वहां से एक बहुत ही कॉन्क्रीट शेप लेना शुरू किया प्ले ने।
1: क्या बात है।
0: या
1: और इस पूरी जर्नी के दौरान वो आपने प्ले कंप्लीट भी कर लिया।
0: यस।

0: हमने शोज भी किए अब
1: पहला
0: तो।
1: शो कब कहाँ हुआ था?
0: पहला शो G5A में फरवरी एंड में हुआ,
1: जी,
0: उसके बाद हम काला घोड़ा फेस्टिवल में हम लोगों ने परफॉर्म किया, लखनऊ में किया, और अभी 24 मई को रंगशीला में हमारा परफॉर्मेंस है, और फिर आगे और भी करेंगे शोज।
1: यहां एक गाने की जगह बनाई जाए,
0: हाँ
1: सुनते हैं।

कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: इस शो को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और जो लोग इस पूरे दौर से इस मुश्किल से गुजर चुके हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इससे?
2: तो ब्रेस्ट ऑफ लक को बहुत ही बढ़िया रिस्पांस, मतलब वी कुडंट थिंक सर्वाइवर से और ऑन्कोलॉजिस्ट से और आम जनता, हर तरीके के ऑडियंस से बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। जैसे मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट भी आए थे देखने और लखनऊ में बहुत फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट आए थे और उन लोगों ने भी यही कहा कि ये प्ले ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखानी चाहिए क्योंकि कॉन्वर्सेशंस अराउंड कैंसर एंड अराउंड ब्रेस्ट कैंसर, अराउंड द फैक्ट दैट स्क्रीनिंग, आप चाहे कितनी भी हेल्दी हो आपको क्या कब हिट करती है आप नहीं कह सकते। और ये चीज हम प्ले के तहत कहना चाह रहे हैं कि और इमोशनली कह रहे हैं क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हमने एक कहानी कही है, पर स्क्रीनिंग करवाना अगर आप 40 के हिट कर गए हो एज अ वुमन, आज की तारीख में मैमोग्राफी करवाना, टेस्ट्स करवाना, ये बहुत जरूरी है। इवन इफ यू आर हेल्दी, आपको पता नहीं है मैंने ये नहीं की, ये गलती की मैंने, क्योंकि मुझे लगा मैं तो फिट हूं, मुझे

0: कुछ नहीं है, मैं बहुत हेल्दी लाइफ लिव करती हूँ. सो बट यू जस्ट नेवर नो, ये जो म्यूटेशंस क्यों होती है आज तक साइंस को नहीं मालूम. तो हम लोग बहुत सारे चर्चे करते रहते हैं कि अरे आयुर्वेदा कर लो या ये कर लो वो कर लो. हाँ, उन सब चीजों से क्या होता है कि आपका जनरल हेल्थ अच्छा होता है, तो प्रोग्नोसिस सबका अच्छा होता है, लेकिन दैट डजंट गारंटी एनीथिंग. ये म्यूटेशंस क्यों होता है वी रियली डोंट नो, साइंस डजंट नो इट. और आपको चीजों को साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू ही एनालाइज करना पड़ेगा, और उस नॉलेज के बेसिस पे ही आपकी जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी.
1: बिल्कुल, इस तरह की जब लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होती हैं तो करेज कायम रखना, अपना मेंटल और इमोशनल बैलेंस कायम रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज अ सर्वाइवर। इतने सारे लोग जो इन चीजों से, इन मुसीबतों से गुजर रहे हैं, उनको आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे?
0: पहला तो ये कि मैं अपने आप को अभी भी सर्वाइवर कह सकती हूं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मैं ये मानती हूं कि आज मैं यहां पे हूं, आपके साथ बातचीत कर रही हूं, आज मैं अपने फिल्म को लेकर दुनिया भर ट्रैवल कर रही हूं, अपना प्ले कर रही हूं, अपनी जिंदगी जी रही हूं, अपनी बेटी को पृथ्वी में वर्कशॉप करवाने ले जा रही हूं. आई एम लिविंग माई लाइफ एंड दैट्स ऑल आई कैन डू, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप
1: इस
0: यही कर
1: लम्हे में
0: सकते हो,
1: जो भी
0: और
1: है बस यही
0: हियर
1: पल
0: एंड
1: है।
0: नाउ. कल का तो हमने ना तो आपको पता है ना मुझे. ये रियलाइजेशन मुझे हमेशा से था, बट अब तो मतलब ये इंटरनल है. वी रियली डोंट नो, मतलब मैं एक दिन पूरा एक आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड अ टर्मिनल इलनेस. हाउ बिजार इज दैट. मेरे दोस्तों को जब पता चला, वो सब ये कहने लगे कि टैन मतलब यू नो, क्योंकि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई एम नॉट दैट, यू नो, सिगरेट मैंने आज तक जिंदगी में हाथ नहीं लगाया. आई ईट हेल्दी, आई हैव ऑलवेज बीन फिट. मेरा कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है रिप्रोडक्टिव कैंसर्स का. मेरा ब्राका टेस्ट नेगेटिव है, विच इज सपोज टू बी द हेरिडिटरी एलिमेंट ऑफ इट. सो हाउ देन, जस्ट यू जस्ट नेवर नो. तो आप वही पंडित रविशंकर ने जो कहा था ना कि जा हवार ता हवे, आप अपनी जिंदगी जियो इस वक्त, हियर एंड नाउ. मैं जब कीमोथेरेपी पे जाती थी, मैं दोस्तों को बुला लेती थी, वहां हमारे अड्डे चलते थे, वहां कोई पोएट्री पढ़ रहा है, कोई म्यूजिक सुना रहा है, वो हम चुटकुले
1: क्या
0: मतलब ये,
1: बात है,
0: ताकि वो वक्त निकल जाए. मेरे
1: बिल्कुल।
0: ट्रीटमेंट का जो पेन है, बाल झड़ रहे थे, मैंने शेव करवा लिए.
1: और वो भी पब्लिक को दिखाया प्रॉपरली
0: यस
1: कि यस आई एम गोइंग थ्रू दिस।
0: यस आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, आई मीन दैट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई एक्सपीरियंस्ड इट. आई एम एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स एंड आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस. और हम यही करते हैं और यही कर सकते हैं.
1: बिल्कुल। तनिषा, क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स जैसी कोई चीज होती है लाइफ में, वो आपने कुछ कर रखा है कि अभी कल का क्या करना है?
0: नहीं मत, कल का सिर्फ पता है
1: कल
0: क्योंकि
1: का
0: मैं
1: पता है कि कल
0: परसों
1: का जाना
0: दिल्ली
1: है,
0: जा रही हूँ, फुल प्लेट की एक स्क्रीनिंग है वहां हैबिटेट सेंटर में.
1: तो क्या अगले
0: नहीं,
1: प्ले की कोई प्लानिंग है?
0: कुछ चीजें लिख रही हूँ, लेकिन वो कब आएगी कब होगा ये पता नहीं अभी. बट आई एम राइटिंग सर्टन थिंग्स. फिल्म भी लिख रही हूँ, प्ले भी लिख रही हूँ.
1: तो एक्टिंग चलने वाली है या अभी आप डायरेक्टर हो गई हैं?
0: नहीं, एक्टिंग तो बिल्कुल चलने वाली है. अभी बेस्ट ऑफ लक में तो मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ. हमने लिखा है, हम एक्टिंग कर रहे हैं. मैंने एक्चुअली लीना को रिक्वेस्ट किया कि आप डायरेक्ट कर दो, सो शी हैज डायरेक्टेड इट.
1: ओके, वाओ, बढ़िया बात है। तो अब मुझे ये बताइए कि जब आप प्ले या फिल्म या लिखना ये कुछ नहीं कर रही हैं, मतलब कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, उस बीच में क्या चल रहा होता है?
0: हाँ, क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है. मैं स्विमिंग कर रही हूँ आजकल, बहुत मजा आ रहा है. तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द पूल, थोड़ा वहां रिलैक्स भी हो जाते हैं. बेटी भी सीख रही है, स्विमिंग सीख रही है. देन आई स्पेंड टाइम विथ हर. खाना बनाने में मुझे मजा आता है, और आजकल थोड़ा सा मुझे अपने डाइट पे भी
1: काम करना पड़
0: कंसंट्रेट
1: रहा है।
0: करना पड़ता है, तो मैं खुद अपना कुछ बना लेती हूँ.
1: क्या बनाती है?
0: हाँ, मैं बोलूंगी ना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा मेरा खाना आजकल जो हो रहा है. मम्मी कहती कि अच्छा इसको बुला लो, उसको बुला. मैंने कहा कि घर पे लोगों बुलाएंगे खिलाएंगे क्या, क्योंकि क्यूजीन तो ये बन रहा है. मेरी वजह से अभी मेरी बेटी भी जो है वो हेल्दी सुन सुन के, उसका एक चैप्टर है साइंस में अबाउट फूड एंड विटामिन, उसको सब एफर्टलेसली आता है. इतना सुन चुकी है वो कि इस खाने में क्या विटामिन है, क्या खाने से क्या

0: एफिशिएंसी होगी.
1: राइट राइट, सो शी इज एन एक्सपर्ट नाउ.
0: या
1: बिल्कुल
0: वो
1: सही है.
0: एक्चुअली मुझे टीज करने लगती है अभी. मम्मी पता है क्या कहेगी, ये देखो ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, इसमें पता है ये विटामिन है, वो मिनरल्स है और ये
1: पहले ही बोल देती.
0: मिलेगा.
1: क्या बात है तनिषा, बहुत दिलचस्प बातचीत आपसे हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे फिर कभी बैठेंगे और फिर इसी तरह से बातें करेंगे.
0: बिल्कुल. और जाते जाते एक गाना,
1: जरूर
0: जीवन से भरी तेरी आंखें
1: मजबूर करें
0: करे
1: जीने के
0: जीने
1: लिए
0: के
1: सफर,
0: लिए.
1: फिल्म का ये गाना.
0: यस
1: इस गाने को इंदीवर ने लिखा है
0: हाँ
1: और म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी हैं.

0: तनिषा, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया चीजें शेयर करने में, एक्चुअली यहाँ आने में. और जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ जरूर और एक
0: जरूर
1: बार आना
0: आइए,
1: चाहूंगी.
0: स्वागत है।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग. चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले.

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा हुजूर।
4: एक आवाज जिसमें है जोश जुनून नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी

FM बैंड 101.1 MHz ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी ट्यून कीता है आकाशवाणी FM बठिंडा। स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक समा 5:01 ते 2 सेकंड दा है। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम किसान वाणी। इस विच विशा रहेगा बरसात रुत विच बागां दी सांभ संभाल। प्रोग्राम दे मेज़बान होणगे कुलजीत सिंह चहल अते मनदीप रजौरा, और इस प्रोग्राम दे मेहमान होंगे डॉक्टर नवजोत गुप्ता।

जी श्रोतियों, तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम गल्लां चो गल दे तहत मेरे जानी के राजपाल कौर भरी वल्लों। अज दे इस प्रोग्राम तहत तुसी सुनोगे सिलसिला हर अकाल उस्तत। इस दे अंदर तुसी सुनोगे श्रीमत भगवत गीता दे भाग दूजा विचो श्लोक 51 तो 60 तक। इस दे निर्माता ते निर्देशक हैं श्री बलजीत शर्मा ते वाचक रहणगे ममता अरोड़ा।

0: कर्म क्षेत्र है,
1: कुरुक्षेत्र है।
2: खींच दुशासन, खींच
0: अहंकार।

अर्थात बुद्धि योग व्यक्ति जेड़े श्रद्धा भाव नाल सेवा करदे हन, कर्म तो उत्पन्न होने वाले फल नूं त्याग के जन्म रूपी बंधन तो मुक्त होके विकार रहत पद मोक्ष नूं प्राप्त कर लैंदे हन। योगी लई हर प्रकार दे कर्म समान हुंदे ने। योगी अजिहे कर्मां नूं जो मुसीबत संकट दुख नाल भरपूर होन अते श्रेष्ठ उत्तम शालीन अते चंगेरा बना लैंदे ने। कर्मां दी मूल कारज प्रक्रिया जन्म मरण दे चक्कर नूं चलाई रखना हुंदा है। जिवें शिव शंकर भगवान ने सागर मंथन करके जहर खत्म कीती अते संसार नूं अमृत भेट करके बचाया। योग संसार दीआं सारीआं बुराईआं लई अक्षीर है। भौतिक संसार संकटां खतरियां अते मुसीबतां दा घर है। अज्ञानता कारण बुद्धिहीन व्यक्ति अपने जीवन हालात नूं कुछ भले दे काम करके संभालन दा यतन करदे ने। ओह समझदे ने उन्हां वल्लों पुन कारजां नाल उन्हां दीआं मुसीबतां घट जाणगीआं। ओह इह नहीं जाणदे कि इस कायनात विच जीवन रूपी अजिहा कोई शरीर नहीं जिस नूं मुसीबतां दा सामना नहीं करना पए। जन्म मरण अपने आप जिंदगी दी मुसीबत है। बुढ़ापा बीमारी घाटा दुख संकट होर मुसीबतां ने जिस जीवन अथवा आत्मा ने ए जान लिया कि साडा सब दा प्रभुता

महान शक्तिमान परमात्म कर्ता ते रक्षक है। ओ व्यक्ति आप श्रद्धा प्यार समर्पण अते आत्मा तो उस दी सेवा श्रद्धा प्यार विच अपने आप नू समर्पण कर देवेगा। अंत नू ओ अजेहे बैकुंठ संसार विच प्रवेश करेगा जिथे ना दुख सुख ना जित हार ना बीमारी ना बुढ़ापा है। इथे ना जन्म मरण है, एहो योग मार्ग है जिस उपर चलदिया संसारी जीव मुक्ति प्राप्त करदा है, फिर आप प्रभु बन जांदा है। इस श्लोक दी जीवन लई सिख्या है, अपना फर्ज पूरी इमानदारी नाल निभाओ, पर नतीजे दी बेलोड़ी चिंता ना करो। सफलता या असफलता नालों कर्म दी शुद्धता वधेरे महत्वपूर्ण है। जदों कर्म परमात्मा नूं अर्पित हो जांदे ने तां ओही मुक्ति दा साधन बन जांदे ने। इस श्लोक दा सार है, निष्काम भाव नाल समता बुद्धि रख के कीते कर्म मनुख नूं कर्म बंधन तो मुक्त करके परम शांति अते मुक्ति वल लै जांदे ने।

अर्थात जदों तेरी बुद्धि मोह भरम दे मिथ्या दे संघने जंगल नूं पार कर लवेगी तद तू उस समय सुनन योग अते सुने हुए सारे विषयां प्रति वैराग स्थिति नूं प्राप्त कर लवेगा भाव ए विषय तेरे लई निरार्थक हो जानगे। श्रोतियो इस श्लोक की व्याख्या है योग दी उच्चतम अवस्था उपर पुज के मोह भरम मिथी दे सारे जंजाल खत्म हो जांदे ने। इस अवस्था ते पुज्या योगी फिर आत्म अते प्रकृति असली अते नकली विच अंतर करदा है। जीव जो होन दी संभावित प्रक्रिया पार करन वाला है सती दा अनुभव करदा है। फिर उस नू दृष्टिमान संसार दी असल कीमत दा पता लगदा है। उस लई इस संसार दी प्रगटीकरण वस्तां गर्मी सर्दी गैस विकास प्रक्रिया सितारियां दी बनतर उत्पत्ति गति आदि अते होर उलझना निरार्थक हो जांदियां ने। इस लई संसार दी कोई घटना भावे महाभारत दा युद्ध होवे बेमाने है। कर्म कांड रस्मा रीतियां उस लई महत्वपूर्ण नहीं रह जांदियां। अति श्रद्धावान निष्ठावान कृष्ण भगत हर समय हर पासे हर हाल विच तू ही तू तू ही तू करदा होया उस नाल एकमिक हो जांदा है। इस श्लोक दी जीवन लई सिख्या ए है मोह अते भरम ही दुनिया दे दुखां दा मुख कारण है। ज्ञान दा उद्देश सिर्फ जानकारी वधाउणा नहीं सगो जीवन विच स्पष्टता अते विवेक लियाउणा है। जदों मन सच विच टिक जांदा है तां बाहरी आकर्षण अपना प्रभाव गुआ बैठदे ने। जदों मनुख दी बुद्धि मोह अते भरम तो उपर उठ जांदी है तद ओ आत्मिक सच विच स्थिर हो जांदा है अते संसारिक आकर्षणा तो मुक्त हो जांदा है।

अर्थात जदों तेरा मन वेद बाणी दे अगमी ज्ञान नूं उलझाउण वाले तत्थां नूं सुन सुन के डावां डोल हो जावेगा अते फेर अंत नूं स्वै चिंतन अर्थात समाधि दी अवस्था तो परपक हो जावेगा। उस समय तैनूं योग प्राप्त होवेगा। श्रोतियो, इस श्लोक दी व्याख्या है समाधि की है। अपने अंतःकरण मन मस्तक नूं प्रभुत्व परमात्म नाल एकमिक करना। समाधि विच लीन योगी जो कारज करदा है ओ प्रभुत्व परमात्म चेतनता अनुसार उस दे हुकम विच रह के मानव सेवा लई करदा है। समाधि विच लीन साधक दा मन डोलदा नहीं ना परेशान हुंदा है। जदों मनोवृत्ति अपने संतुलन अवस्था नूं वी पार कर लैंदी है ओ समाधि है। एहो पवित्र श्रेष्ठ अते उत्तम मनोचेतना है जो जीवन दा मंतव है। नेकी चंग्याई उत्तम गुणा दी प्राप्ति करन पिछो दुनियावी उलझना विच फस के फिर अध्यात्मक मंतव प्राप्त करने औखे ने। जेकर अध्यात्मक चानन प्राप्त करन पिछो कोई व्यक्ति दुनियावी जीवन विच प्रवेश करदा है ता उस दिया मनो चिंतावां दूर ही रहंदियां ने। इस श्लोक दी जीवन लई सिख्या है हर नवी गल सुन के अपना

संतुलन ना गवाओ, विवेक नाल विचार करो। नियमित सिमरन, ध्यान अते सत्संग मन नूं स्थिर बनाउंदे ने। सच्चा योग मन दी शांति अते परमात्मा नाल जुड़ा विच है, ना कि बाहरी क्रियावां विच। इस श्लोक दा सार है, जदों मन दुविधा तो मुक्त होके परमात्मा विच अडोल हो जांदा है, तद मनुख योग दी असल अवस्था नूं प्राप्त कर लैंदा है।

अर्जुन ने कहा, हे केशव, जेड़े परपक स्थिर वाले समाधि विच लीन हुंदे ने, उन्हां दे की लक्षण ने? परपक स्थिर बुद्धि विच व्यक्ति किवें बोलदा है, किवें बैठदा है अते किवें चलदा फिरदा है? ते स्रोतियो, इस श्लोक की व्याख्या है कि इस श्लोक विच स्थित जेड़ा ब्रह्म नूं जान लैंदा है ओही ब्राह्मण है। जदों कोई अजिहा जीव समाधि अवस्था विच हुंदा है, उसकी मानसिक अवस्था कहो जी हुंदी है? जदों ओ दुनियावी भौतिकी वस्तां वल अपना ध्यान करदा है, उस समय उसका की हाल हुंदा है? उसका उत्तर केवल एहो है, पूर्णता, संतुलता, परपक्ता अते उच्चतम अवस्था लई निरंतर

0: उच्यते।
1: श्री कृष्णा बोले, हे पार्थ, जदों व्यक्ति मन विच विद्यमान रहन वालियां सारियां कामनावां नूं त्याग देंदा है अते अपने आप तो अपने आप विच ही संतुष्ट हो जांदा है, तद ही ओ परपक स्थिर बुद्धिमान अखवांदा है। अर्जन दे प्रश्न दे पहले भाग दा उत्तर इस श्लोक विच दित्ता गया है। अग दी तासीर गर्म है, इस नूं निग लैण लई किसी होर कोल जाण दी लोड़ नहीं। इसे तरह आत्मा अपने आप विस्मादी अनादी सुख अते आनंद है। जे वस्तां बाहर ने आत्मा उन्हां नूं अपने संपर्क विच करके आनंदमई बना लैंदी है। उन्हां वस्तां दी भाल विच जां उन्हां नूं प्राप्त करके आनंद प्राप्त कीता जा सकदा है। जदों कोई अपने स्वै तो बाहर जाके आनंद तलाश करदा है तां ओह काम है। दूजे शब्दां विच मन बदली दा लुट खसुट ही काम है, जिस नाल आत्मा दी दृष्टि मंद हो जांदी है। नालो नाल बाहर लियां वस्तां चो मिली खुशी ही उत्तम लगन लग पैंदी है। पर जदों मन काम तो मुक्त होके अपने अंदर झात मारदा है ताही आत्मा अपनी पूरी शानो शौकत विच अनुभव कीती जा सकदी है। जिसने बाहरों खुशी तलाश करन दी थां अपने अंतःकरण चो खुशी लभ ली ओही ब्राह्मण है, ओही संतुष्ट हुंदा है, इंज करन वाला योगी है, इंज करन वाला ब्राह्मण है। बौद्धी पूर्ण विकास लई आत्मा अपने स्वै नाल हमेशा संतुष्टि दे आलम विच सहजमई रहंदी है। परम आनंद दी अजही अवस्था श्री कृष्ण चेतनता अंदर है। योगी लोक अजही अवस्था नूं प्राप्त करन दे समर्थ हो जांदे ने। इस श्लोक दी जीवन लई सिख्या है, इच्छावां जिन्नियां वधदियां ने मन उन्ना ही अशांत हुंदा है। असल सुख बाहरी नहीं अपने अंदर अते परमात्मा नाल जुड़न विच है। संतोख सिमरन अते सेवा नाल मन हौली हौली स्थिर बनदा है। इस श्लोक दा सार है, स्थित प्रज्ञा ओ है जो मन दियां स्वार्थी इच्छावां तों उपर उठ के अपने आत्म स्वरूप अते परमात्मा विच सच्चा आनंद अते संतुष्टि प्राप्त कर दियां ने।

हार के निराश नहीं हुंदा। सहज अवस्था विच निष्काम होके योग धारना ते चलदा है। डर अज्ञानता कारण पैदा हुंदा है। उस दे हुंदिया व्यक्ति अंदरों मानवी गुण अलोप हो जांदे ने। डर मौत तो भी भैड़ा है। साडे पुरातन ग्रंथ उपनिषदां विच दा निडरता बनाई रखन दा सुनेहा अटल है। जन्म विच मौत दा डर सब तो वड्डा है। निडरता बनाई रखन नाल बुद्धि दा विकास हुंदा है अते जीवन मिलदा है। जे मन दी निर्लेपता निरपक्षता अते सुतंत्रता है तां डर गुस्सा अलोप रहिंदा है। मुनि दा मन डर गुस्से तो मुक्त प्रकाशमई सुतंत्र सहजमई अते स्वै विच लीन हुंदा है। श्री रामा कृष्णा दे शब्दां विच जो व्यक्ति नफरत ते कमीनगी दे वस विच है ओ कदे भी अध्यापक पद प्राप्त नहीं कर सकदा। अर्थात दुख आवे ता धीरज रखो, सुख आवे ता निमरता रखो। मोह डर अते क्रोध मनुख दी सोच नूं धुंधला कर देंदे ने। इन्हां ते काबू ही आत्मिक उन्नति दा राह है। असल ज्ञानी ओ है जो हर हालत विच मन दा संतुलन बनाई रखदा है।

अर्थात जेड़ा व्यक्ति सारे विषयां विच किसे नाल मोह बंधन विच नहीं भजदा, ना ही ओ चंगी या भैड़ी वस्तु प्राप्त करके खुश हुंदा है, ना निरउत्साहित हुंदा है, ओ स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। जो मनुख हर थां मोह ममता तो रहत हुंदा है, ओ शुभ या अशुभ अनुकूल या प्रतिकूल हालात आउण ते ना ही बहुत खुश हुंदा है, ना ही किसे नाल द्वेष करदा है, उस दी बुद्धि स्थिर मन्नी जांदी है। दुनियावी व्यक्ति खुशी गमी दुख सुख जित हार प्रक्रिया विचों दी लंघदे होए आशा निराशा उत्साह निरउत्साह दी अवस्था नूं भोगदे रहिंदे ने, परंतु सिद्ध पुरश योगी विच दुनियावी लोकां दी मनो अवस्था तो उपर उठे होए अपने मन नूं साध के सहज अवस्था विच पा लैंदे ने। श्री रामाकृष्णा दे शब्दां विच पहाड़ दी टीसी उपर खड़े होए व्यक्ति नूं जिवें हेठां मैदानी विच लगे उच्चे लम्मे रुख घा अते उच्चा नीवा इको जिहा विखाई दिंदा है। सियाणा बुद्धिमान योगी प्रभुत्व दी हर वस्तु नूं उसे तरह इको समान वेखदा है, ओ चंगे माड़े वधिया घटिया विच कोई अंतर नहीं करदा। इस श्लोक दी जीवन लई सिख्या है, सफलता विच निमर रहो, असफलता विच धीरज रखो, हर हालत नूं परमात्मा दी रजा समझ के स्वीकार करन दी कोशिश करो। जदों मनुख प्रशंसा अते निंदा लाभ अते हानि विच संभाव रखदा है, तद ही उस दी बुद्धि सच्चे अर्थां विच स्थिर हुंदी है।

अर्थात त्यागी अथवा निराकारी जेडे इंद्रियां राही विषयां दा ग्रहण नहीं करदे, पुरुष दे वी विषय तां निर्वित हो जांदे ने, पर रस नूं छड के अर्थात विषयां विच रस बुद्धि या तृष्णा नवृत नहीं हुंदी, उह संयमी त्यागी पुरुष दा ए रस अर्थात तृष्णा भी प्राप्त परमात्मा दी अंतर दृष्टि करके निर्वित हो जांदा है। अर्थात जो मनुख इंद्री विषयां तो दूर रहंदा है, उस तो बाहरले विषय तां दूर हो सकदे ने, पर उन्हां दा आकर्षण रस मन विच बाकी रहंदा है। पर जदों ओ परमात्मा दे उच्चे आनंद दा अनुभव कर लैंदा है, तां ओ आकर्षण भी अपने आप खत्म हो जांदा है। इस श्लोक विच भगवान श्री कृष्ण जी बाहरी संयम अते अंदरूनी वैराग विच अंतर दसदे ने। कोई मनुख व्रत नियम या हालातां करके भोगा तो दूर रह सकदा है, पर उस दे मन विच उन्हां दी इच्छा अजे भी हो सकदी है। सिर्फ दबाव नाल इच्छावां खत्म नहीं हुंदियां, ओह मन विच लुकियां रह सकदियां ने। जदों मनुख परमात्मा दे नाम भगती ज्ञान अते आत्म अनुभव दा उच्चा आनंद प्राप्त करदा है, ता ओ संसारिक भोगां दा मोह अपने आप फिक्का पै जांदा है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ त्याग नहीं सिखाउंदी, ओ उच्चे आनंद दी प्राप्ति दा मार्ग दिखाउंदी है। इस श्लोक दी जीवन लई सिख्या है, केवल बाहरी नियम पालन नाल मन शुद्ध नहीं हुंदा। बुरियां आदतां नूं सिर्फ छड्डन दी कोशिश नहीं, सगो चंगे विचारां सत्संग सिमरन अते सेवा नाल जीवन नूं भरना भी जरूरी है। जदों मन नूं उच्चा मकसद मिल जांदा है, तां छोटे छोटे मोह अपने आप छुट्टन लग पैंदे ने। इस श्लोक दा सार है, हेठले सुखां दा मोह केवल रोकर नाल नहीं, सगो परमात्मा दे उच्चे आनंद दा अनुभव करन नाल सदा लई दूर हुंदा है।

हे कुंती पुत्र, उत्तेजित इंद्रियां बुद्धिमान व्यक्ति दे मन नूं वी बलपूर्वक अपने काबू करके अशांत कर दिंदियां ने। बुद्धि युक्त व्यक्ति तां पूर्ण परपक्ता दे लई तांगदा ही रह जांदा है। इस श्लोक विच श्री कृष्णा अर्जुन नूं कहंदे ने, हे कौंतेय, बहुत यतन करन वाले अते विवेकवान मनुख दा मन वी ए चंचल अते शक्तिशाली इंद्रियां जबरदस्ती अपने वस विच कर लैंदियां ने। इस श्लोक विच श्री कृष्णा इंद्रियां दी शक्ति बारे चेतावनी दिंदे ने। मनुख पावे ज्ञानी होवे या आत्म संयम दा अभ्यास करदा होवे, फिर भी इंद्रियां

0: दर्ज करके अगलेरी कार्रवाई की जा रही है। पंजाब के कई हिस्सों में अज सवेर तो ही बदलवाई बनी हुई है ते मीह भी पिया जिस नाल गर्मी तो कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल 12 अगस्त को सूबे च वक् वक् थावां ते भारी मीह पैण की पेशेनगोई करदिया येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने कहा कि पै रहे मीह कारण तापमान घटन ते पंजाब ते चंडीगढ़ के हिस्सों च हुमस भरे मौसम तो कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान वध तो वध तापमान बठिंडा च 36 डिग्री सैलसीयस, हरियाणा के पलवल च 33.5 डिग्री ते चंडीगढ़ च 29.4 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। राजस्थान च भी भारी मीह पैण बारे रेड अलर्ट जारी किया गया। ते आखिर च खास खबर एक बार फिर तो संसद के दोवें सदनों की कार्रवाई वक् वक् मुद्दों ते विरोधी धिर के हंगामे कारण कल सवेरे 11 बजे तक मुलतवी हुई। फौज मुखी जनरल धीरज सेठ वालों पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया नाल मुलाकात, अंदरूनी सुरक्षा ते सरहदी खेतरां च कीते जा रहे प्रोजेक्टां संबंधी जाणू करवाया। ते मौसम विभाग ने कल नूं पंजाब च वक् वक् थावां ते भारी मीह पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया। इस दे नाल ही प्रदेशक खबरां खत्म हुई। राष्ट्रीय खबरां का अगला बुलेटिन तुसीं सुनोगे शाम 7:30। नमस्कार।
1: सुनो, की तुसी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बारे सुनिया है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इस नाल तोड़ा घर सूर्य घर बन जाता है, यानी तोड़ा बिजली दा बिल जीरो। होर पैदा हुई कोई भी वादू बिजली ग्रिड नू बेच के पैसे भी कमा सकते हो। ता तुसी बैठे क्यों हो? हुणे रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in ते।

0: तो छोटे बच्चे सब में भी यही इम्पोर्टेंट है। बच्चों में भी अगर हमने सर्वे किया और अब हमने यहाँ पे भी देखा कि जैसे हम अपने जो सारे वर्कर्स हैं सबका एनीमिया वो करा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हर वर्ग में, मतलब ये जो स्पेशल वर्ग हैं जैसे छोटे बच्चे हो गए या 10 साल से छोटे बच्चे हो गए, या फिर दूसरा किशोर अवस्था ग्रुप है, तीसरा जो ये लैक्टेटिंग फीमेल्स होती हैं, या ANC एंटीनेटल केयर हैं जो छोटे बच्चे हैं उनमें हो गया, जीरेट्रिक ग्रुप जो 60 साल के ऊपर, सारे ग्रुप में देखा कि 50-60% एनीमिया है अभी। तो एनीमिया है तो उसके लिए हमें स्वच्छ पानी पीना है, तो पानी अगर अच्छा हम स्वच्छ पियेंगे तो हम अपना एनीमिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों में भी 12 के ऊपर फीमेल्स में अपने 12 के ऊपर रखना है, और मेल्स में 14 से 16 करीब होता है ये हीमोग्लोबिन।
1: तो डॉक्टर साहब तुसी यह कैंप 9 तो 17 तारीख तक चलाओगे?
0: ये जो वेलनेस क्लिनिक है ये तो हमारी डेली खुली हुई है, आप जरूरी नहीं है कि हम जब बीमार हों तभी हम आए, ये इसमें आप कभी भी आके अपने स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, और बीमार होने पे नहीं आए, आप हमारे पास जब स्वस्थ हो तब भी अपनी जांच कराएं ताकि आप बीमार ना पड़े। तो ये एक आज एनीमिया का ड्राइव है, पर ये हमेशा यहाँ पे वेलनेस क्लिनिक में ये हमेशा ये सुविधाएं मिलती हैं।
1: जी डॉक्टर साहब तुसी बहुत वधिया जानकारी दित्ती, असी अगली बार तुहाडे कोलों तुहाडा जो विभाग है कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन उस विभाग विच दित्तियां जाण वालियां होर सुविधावां बारे जाणांगे। फिलहाल तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: जी श्रोते तुसीं इह जानकारी सुन रहे सी डॉक्टर राकेश कक्कड़ होरां पासों, जो कि एम्स बठिंडा दे कम्युनिटी अते फैमिली मेडिसिन विभाग दे मुखी ने अते प्रोफेसर ने। असी तुहानू दस दईए कि इह जानकारी जिस दे विच के हर घर तिरंगा मुहिम दे तहत कैंप लगाया गया सी, जिस च अनीमिया दी जांच अते अनीमिया बारे जानकारी एम्स बठिंडा विखे पहुंचे हुए उत्थे मरीजां नू OPD विभाग दे विच दित्ती गई। इस संबंधी जानकारी तुसी सुन रहे सी, ते हुण तुहाडे लई सिलसिला हैलो जीनियस लैके असी हाजर हाँ। मेरे नाल ने
3: मैं सुरेंद्र सिंह, ते साडा पहला सवाल है जी, अज जो विधानसभा विच विरोधी धिर दे आगू दा की नाम है जी?
2: जी स्रोतियो तुसी साडा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लो 7173-7176, सानू सत श्री अकाल लिख के ते सानू नमस्कार बुलांदे हुए बहुत सारे मैसेज जिहड़े आ फटाफट आ रहे हैं। ते हुण पहला सवाल जदों पुछ लिया गा कि विधानसभा दे विच विरोधी धिर दे आगू दा नां दसो, सानू जवाब देण लई सारे ही साथी जिहड़े आ उह भब्बां भार हो चुके ने जी, तुसी वी सानू जवाब जिहड़ा है उह लिख भेजो 7173-7176 दे उत्ते।

0: हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी, कौन गल कर रहे हैं जी? तुसी हेलो।
1: हाँ जी हाँ जी हूँ सही हो रही बात जी। पिंड
0: हाँ जी हाँ जी, कौन गल कर रहे हो जी?
1: कुड़ियाणा तो कुलदीप चंगरा जी।
0: अच्छा, पिंड कुड़ियाणा तो कुलदीप जी गल कर रहे हो जी।
1: हाँ जी मैडम जी, ठीक
0: अच्छा जी, की हाल चाल ने बाई जी तुहाडे?
1: है मैम जी, तुसी सुनाओ जी। हर
0: वधिया जी वधिया। ते तुसी केड़ा गीत सुनना चाहोगे अज?
1: भाई ने माला सुना जी, बाबा मेरिया गुड्डियां तेरे घर रह गईयां। धन्यवाद
0: अच्छा जी अच्छा, चलो तुहानू असीं सुनाउंदे आं तुहाडी पसंद दा गीत
1: मैडम जी।
0: जी। धन्यवाद जी।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
3: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
2: कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
3: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जोनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
2: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
2: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
3: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी अजीत जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
3: जी श्रोताओं, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
2: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
3: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
2: जी।
3: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
2: नशाखोरी से दूर रहें,
3: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
2: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
3: जी, तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
2: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे

0: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था
1: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
0: श्रोताओ, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून सन 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
1: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
0: श्रोताओ, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
1: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
0: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
0: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
1: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्योछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो,
3: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रॉलेट

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।

0: और नो।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। Yes. Hey, you, come up!
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: सरकार के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत की चौथा इन्हें गोलियों से भून डालूं। नो नो नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
1: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
2: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।

0: हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
1: हमारी मांगे
2: पूरी करो,
1: हमारी मांगे
2: पूरी करो,
1: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
0: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रोलेट एक्ट वापस लो,
3: रोलेट एक्ट
2: वापस लो,
3: रोलेट एक्ट
2: वापस लो।
0: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
1: मारो,
0: सभा सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
1: सत्यपाल को
2: रिहा करो,
1: डॉक्टर किचलू को
2: रिहा करो,
1: सत्यपाल को
2: रिहा करो।
4: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली। लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
5: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? ऐसे फायर, फायर अगेन।
6: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
5: और शट अप। ठीक, ये सबक काफी है। अबाउट टर्न, फायर।
4: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।

0: लत से करते मासी
1: पापा।
0: मासी मासी मेरे लत से दे
1: करनिया करनिया
0: तेरे मासी ना चाहते
1: पापा कितने
0: तेरे।

0: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे। अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए। अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
1: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
0: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानी और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
2: जनरल डार।
3: यस सर।
2: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
3: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
2: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
3: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
2: क्या वार्निंग नहीं दी?
3: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
2: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
3: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
0: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने दाग पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
1: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
4: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
5: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
6: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
7: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है। उन्हें आप ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
5: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।

0: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांतिप्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: दीक्षा
1: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल
0: दीक्षा दीक्षा।
2: खत्म हुआ झगड़ा।
3: मैंने सिखाता पहाड़ा।
4: माँ देखो भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
3: मैं खेलने नहीं जाऊँ, जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
4: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
3: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा मैं खेलने नहीं जाता। छे एकम छे,
4: छे एकम छे,
3: छे दुनी बारह,
4: छे दुनी बारह।
5: राहुल खेले नहीं आ रहे।
3: अरे यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छे ती अठारह,
4: छे ती अठारह,
3: छे चौक चौक।
2: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
6: अरे मीना तू रो क्यों रही है? और राहुल तू खेलने नहीं गया?
3: माँ मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
6: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
3: मैं क्या करूं, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
6: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
3: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
6: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
2: वाह क्या बात है, लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
4: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
3: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत।

0: वाह क्या बात है, लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
1: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
2: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
1: करता है पर पहाड़ा।
2: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें?
1: फिर पहाड़ा कब?
2: देख मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
1: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
2: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
1: पक्का?
2: पक्का।
1: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
2: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
1: हाँ सच, तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
2: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
0: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
3: तो श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
4: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

0: हाँ जी राजपाल कौर जी, दसो जी तुहाडे कोले व्हाट्सएप ते मिलना दा बहुत व्हाट्सएप आ रहे ने, किन्ने के अपने स्रोते जुड़ चुके ने जी अपने प्रोग्राम नाल।
1: हाँ जी, जेड़े मेरे को व्हाट्सएप ते स्नेहा ने

0: ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਪਰੀ
1: ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ,
0: ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ 8:45 ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ, ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ, ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9 ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
2: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष

0: पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
0: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
4: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
5: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।

0: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
1: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है।
0: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए

0: जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम, एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय।

बेताली फिल्म से आप सुन रहे हैं श्रेया घोषाल और शेखर रजवानी की आवाज में ये गाना, विशाल ददलानी के बोल और विशाल शेखर का संगीत।

श्रेया घोषाल और शेखर रवजियानी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं तुम बिन फिल्म से, सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, फैज अनवर के बोल, निखिल विनय का संगीत।

महालक्ष्मी अय्यर और राघव संचार की आवाज में आप सुन रहे हैं 1 2 3। इस फिल्म से गाना आदित्य धर के बोल और म्यूजिक है राघव संचार का।

0: ये है विविध भारती। आज के फनकार दोस्तों, आज है खास दिन। जी हाँ, आज है अभिनेता सुनील शेट्टी का जन्मदिन। उनको विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो आज हम सुनेंगे अभिनेता सुनील शेट्टी पर केंद्रित कार्यक्रम, लेकिन बस कुछ ही देर में।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना

0: ये गाना
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों गा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनील शेट्टी 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक मैंगलोर के मुल्की तालुका में जन्मे। तुलु भाषी बंट परिवार के सदस्य सुनील शेट्टी अंक शास्त्र में बहुत विश्वास रखते हैं, इसीलिए उन्होंने उसी के अनुसार अपने नाम की स्पेलिंग्स में भी फेर बदल किया है।

पानी और भाई जी से कभी खेलना नहीं। आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाई जी तड़पाता है।

1992 में फिल्म बलवान से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले सुनील शेट्टी को जब दर्शकों ने देखा तो उनमें सभी को एक ही मैन नजर आया। कमी नहीं है लड़की।

जैसे जैसे सुनील फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाते चले गए, वैसे वैसे उनके अभिनय में भी निखार आता गया। इसी से उत्साहित होकर सुनील ने कॉमेडी रोल किया अपनी दोहरी भूमिका वाली फिल्म गोपी किशन में। सुनील शेट्टी के दमदार अभिनय को फिल्म इंडस्ट्री ने सराहा, उनके नेगेटिव रोल के लिए फिल्म धड़कन

इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया 2001 में, और 2009 में सुनील शेट्टी को साउथ एशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी फिल्म रेड अलर्ट के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित

शेट्टी ने मुंबई में होटल व्यवसाय भी शुरू किया है और 2003 में फिल्म खेल से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। इस फिल्म में उन्होंने क्रिकेटर अजय जडेजा को बतौर हीरो चांस दिया और खुद बने।

0: तो दोस्तों ये था अभिनेता सुनील शेट्टी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अमरकांत के साथ, प्रस्तुति सहयोग पी के ए नायर, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर विजय दीपक छिब्बर। अब अमरकांत को दीजिए इजाजत, नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: आ रही है विविध भारती पर
1: सुंदरा सोनिए सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे।

0: अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 241 श्रीमान जीसी चंद्रशेखर जी।
2: प्रश्न संख्या 241। क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है? ख, प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है? और ग, ग्रिड संपर्क, पारेषण, ट्रांसमिशन, अवसंरचना और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन किन बाधाओं की पहचान की गई है?

0: sir. Speaker, sir. I am under the pressure of now only. They never pressurize me. You are always pressurizing me. I am never under the pressure of them. I am always under the pressure of you. No, no, I am not under the pressure of anyone. I am not under the pressure of anyone except Kharge ji. I am always under the pressure of Kharge ji, not of anybody else. Honorable Minister. First Supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpai ji.
1: Sir! Sir!
0: Then First Supplementary, G.C. Chandrasekhar
1: ji.
0: You take your seat, I am calling him.
1: Sir, Mike.
0: You take your seat, I am calling him.
2: Mike.
0: First Supplementary, Sriman G.C. Chandrasekhar ji.
1: Sir, kindly do not off the mic till you complete my question, sir.
0: This is my request. Do not off the mic, sir. I am allowing you. I am calling the Second Supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpai ji.
3: I want to know from your माध्यम से, मंत्री से, कि ऑफ शोर एनर्जी के क्या फायदे हैं और इनके लिए क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है।
4: श्रीपद यशो नाइक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री।
3: सभापति महोदय, भारत के लिए ऑफ शोर विंड एनर्जी कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रदान करती है, उसमें से हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सेक्टर तमिलनाडु में लगभग 50 से 54% और गुजरात में 30 से 40% तक सीएफ उपलब्ध है, जिसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्रत्येक मेगावाट से अधिक एनर्जी जनरेशन की संभावना होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑफशोर विंड जो है, तो ऑफशोर विंड की तुलना में अनेक जनरेशन और वहां पैदा होते हैं और उसकी कम वेरिएबिलिटी को प्रदान करता है। तीसरा है, सोलर पावर को विंड एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करती है अध्यक्ष महोदय। चौथा है, तो स्कैर लैंड की आवश्यकता उसमें नहीं होती है और इसे लैंड एक्विजिशन के राइट ऑफ वे हो, इसे जुड़ी कई कंस्ट्रेंसेस सभी बच जाते हैं जो लैंड बेस्ड रिन्यूअल प्रोजेक्ट में एग्जाम में आ जाती है। कोस्टल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और ऑफशोर विंड से डेवलपमेंट से पोर्ट, वेजल फैब्रिकेशन, मरीन लॉजिस्टिक और कोस्टल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, इससे नए एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन पैदा होती है।
0: द थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमती सुधा मोदी जी।
5: सर, ड्यू टू द चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, द रिन्यूएबल एनर्जी इन हाइड्रो प्रोजेक्ट एज वेल एज इन विंड प्रोजेक्ट, हाउ मच इट इज अफेक्टेड, इज देयर एनी losses, if it is there, have it been measured, and I would like to know how every state is affected by drought and cyclone and hurricane and floods and renewable energy with respect to that. Thank you, sir.
3: Honorable Minister, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है तो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, तो ये जो प्रश्न है
4: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
6: हुणे तुसी सुन रहे सी संसद विच चल रहे प्रश्नकाल दी रिकॉर्डिंग दी कार्रवाई दा प्रसारण आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों। आकाशवाणी एफ एम बठिंडा एफ एम बैंड 101.1 MHz ते स्टूडियो दी घड़ी दे अनुसार रात दे 10:05 अते 50 सैकेंड हो रहे ने। आओ हुणे तुहानू एक वार फिर तो लै चलदे हाँ विविध भारती मुंबई दे प्रसारणा वल, जिथों तुसी हुणे सुनोगे प्रोग्राम आज के फनकार ते 10:30 ते होएगा प्रोग्राम ढलती जाए रात।

कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिन्हें किसी का नाम या परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती। वे चुपचाप मन की देहरी पर आकर ठहर जाते हैं। रोज की सहज मुलाकात, मुस्कान में घुली कुछ मधुर बातें और मौन में धड़कते अनकहे एहसास धीरे धीरे मन के आंगन में एक ऐसा अपनापन रच देते हैं जो किसी रिश्ते के नाम से नहीं बल्कि दिल की अनुभूति से पहचाना जाता है। तब लगता है कुछ लोग जीवन में केवल मिलने नहीं आते, वे महज एक एहसास बनकर आते हैं।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। वक्त की सीढ़ी पर कतरा कतरा लम्हे गुजर रहे हैं, इंतजार की बोझिल घड़ियां ठिठक गए हैं, दिल ख्यालों से बहलने को राजी नहीं, सारे गम भुलाने की कोशिश में दिल गुनगुना रहा है तन्हाई और इंतजार का नगमा। रात के सितार पर उदासी और इंतजार की सुर लहरियां बज रही हैं।

उस रोज गुफ्तगू अधूरी रह गई थी, उस रोज से इंतजार का चिराग जल रहा है। अधूरा मिलन, अधूरी चाहत, अधूरा ही पूरे होने की आस जगाता है। इंतजार की आरजू कभी खत्म नहीं होती। उनकी आवाज सुनकर सुबह होती है, शाम उन्हीं की उम्मीद से रोशन होती है, धूप उनकी मुस्कुराहट से खिलती है, प्यार का रंग निखरता है उनके नाम से।

पलकों पर ठहरा है समंदर, बूंदे बहुत ढेर सारी, जज्बात की लहरों से दिल बेचैन है, जगमगाते सितारे थककर सो गए हैं, आसमान का रंग नीले से सिलेटी हो चला है, धरती सन्नाटे की चादर ओढ़े किसी आहट का इंतजार कर रही है, वो अपने गम के शामियाने पर मोहब्बत के फूल काट रही है और गा रही है इंतजार का ये नगमा।

तुम्हीं ने भरी जिंदगी में रोशनी, तुम्हीं ने सींचा प्रेम के जल से मन की क्यारी को। यही वो मौसम था जब गुलाबी मन पर तुमने पीला रंग छिड़क दिया था, और फिर सरसों के पीले फूल इतराते हुए मुस्कुरा उठे थे। बाग में बैठा मैना का जोड़ा अपनी बोली में कुछ बोला था, और दो चेहरों के गाल गुलाबी हो गए थे।